FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों

0: पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान होगा भाग 180। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता। श्रृंखला होगी महिला रचनाकारों की बंदिशें कलाकार गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर भाग 4। गायन सहभाग अनुजा झोकरकर, तबला यति भागवत और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनावणे, निवेदन ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए 7:30 से हमें राही प्यार के। 8 समाचार प्रभात 8:15 पर सुबह त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। 10 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। 11 रंग तरंग। 12 हिंदी समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी और 2:15 पर दोपहर समाचार। पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेलियों के अंतर्गत सुनेगा शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, साड़ियों का संसार, चिकन की साड़ियां, कलाकारी और शब्द हमारे विचार आपके सामंजस्य व्यंजन होंगे, फलों के जायके। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। इसके अंतर्गत सुने सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। शाम 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम विवरण सुनिएगा झरोखा के अंतर्गत। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुने। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका आराम बड़ी चीज है। लेखन शांति मेहरोत्रा का, निर्देशन रूपम नारायण पांडे का। 8:15 पर चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या। 9 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। 10 छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग।

आपको फिर से बता दें, 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर और 2 बजे त्रिवेणी। 9:30 पर सुबह और रात आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा। ये केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। सुबह 10 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा।

शाम 4 बजे आपको फिर से बता दें, पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनिए सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: कहान, आपने सुना भाग 180।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें ये श्रृंखला लेकर हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, आज इस कड़ी में हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं ये तो आप जानकारी दीजिएगा ही, लेकिन पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि महिलाओं ने किस तरह की बंदिशें रची और किस तरह की बंदिशों का समावेश किया, और एक प्रश्न और है साथ में कि उन्होंने क्या ध्रुपद और धमार भी रचा?
1: जी, कई महिलाओं ने अपने हिसाब से ध्रुपद, धमार, होरी
0: जी
1: और तराने, अलग अलग प्रकार के इस तरह के अलग अलग गीत प्रकारों को भी संगीतबद्ध किया है
0: जी।
1: क्योंकि उस समय का दौर कुछ अलग था। बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। महिलाओं का बाहर गाना बजाना
0: मुश्किल था,
1: नहीं के बराबर था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ और जो सामाजिक जो कुरीतियाँ अलग होते गई और महिलाओं को स्वतंत्रता जैसे प्राप्त होने लगी, तो उनकी गायन शैली में अलग अलग रचनाओं का समावेश हुआ और उनको बाहर लोगों के सामने गाने की इजाज़त जब मिली
0: जी,
1: तब उनको अपने भावों को प्रकट करने और गायकी का ढंग अपने अलग से बताने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज मिला, क्या कहते हैं, मंच मिला
0: जी।
1: और जिसके कारण वो अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की बंदिशों के द्वारा करती गई
0: जी। तो गायन के कौन कौन से प्रकार उन्होंने रचे?
1: बहुत ज़्यादा तो ध्रुपद धमार नहीं रचा है, लेकिन कुछ हद तक बंदिशें उसकी भी बनाई गई हैं। अधिकतर विलंबित द्रुत ख्याल तराने, इनका अधिकतर प्रचलन हुआ
0: जी,
1: रचनाओं का निर्माण हुआ। और ठुमरी, दादरे, होरी, चैती, कजरी, उपशास्त्रीय संगीत के इन प्रकारों को भी कई महिलाओं ने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं
0: जी। तो बताइए कि आज की इस कड़ी में किन रचनाकार की आप चर्चा करना चाहेंगी और कौन सा राग सम्मिलित करेंगी?
1: जी जी, आज की हमारी रचनाकार हैं डॉक्टर श्रीमती सुशीला पोहनकर जी
0: जी,
1: जो कि बहुत सुंदर रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। बहुत अच्छी उनकी गायकी थी, अत्यंत सुंदर भावपूर्ण बंदिशों का उन्होंने निर्माण किया है
0: जी।
1: तो सुशीला जी ने अपने पिता बालकृष्ण जोशी, जिनको बाबूराव जोशी कहते थे, उनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई। बाबूराव जी बहुत उत्तम हारमोनियम एवं ऑर्गन वादक भी थे। सुशीला जी ने PhD भी हासिल की एवं जबलपुर महाविद्यालय में संगीत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहकर और बाद में प्राचार्य पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। अनेक विद्यार्थियों को वो तालीम देती रहीं और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का निर्माण किया
0: जी। और आपकी इन बातों से भी हमारे श्रोताओं को तालीम मिल रही है
1: जी।
0: तो बताइए अब कौन सा राग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे?
1: आज उन्होंने बनाई हुई बंदिशों में से हम राग श्री में दो बंदिशें आपको सुनवाते हैं
0: जी। तो राग श्री किस समय गाया बजाया जाता है और क्या है इस राग का चलन?
1: जी, श्री राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गंधार एवं धैवत स्वर वर्जित है। इसकी जाति औडव संपूर्ण कही जाती है और इसका वादी ऋषभ है।

0: वादी पंचम है और गान समय इसका सूर्यास्त के समय का है। ऋषभ पंचम की संगति जो है बहुत ही मनोहारी लगती है
1: जी।
0: तो मैं अब आपको श्री राग का थोड़ा चलन बताती हूँ
1: जी। स्वागत है।

0: अब इसमें कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगी?
1: इसमें मध्यलय तीन ताल में एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल हैं, पत्तियां झर लागी शिशिर ऋतु की।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: और उसके बाद द्रुत एक ताल में एक बंदिश, आओ संजारे घर आओ।
0: वाह,

0: वाह कल्पना जी, आपने अपनी गायकी से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसा सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हुआ। कितनी सुंदर बंदिश थी। और अब बताइए, इस कड़ी में अब क्या शामिल करेंगे?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी ने बनाई हुई रचनाओं में से राग भूपाली में एक तराना प्रस्तुत करती हूँ।
0: जी,
1: हालांकि मैंने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं चाहूँगी कि ये बहुत सुंदर तराना मैं आपके सामने पेश करूँ।

0: वाह, बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया। अब क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी की आवाज में, उन्होंने ही बनाई हुई राग देश में, एक बंदिश आपको सुनाऊंगी।

महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवा रहे हैं।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का। आज संगीतकार बुलोसी रानी को हम नमन कर रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। सुनिए उनकी मधुर धुनों से सजे कुछ यादगार गीत आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

अब्दुल्ला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में शिवन रिजवी ने इस गीत को लिखा था और बुलु सी रानी का संगीत था। बुलु सी रानी के संगीत से सजा ये जोगन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं गीता रॉय की आवाज में। रचना संत मीराबाई की है, संगीतकार हैं बुलु सी।

0: गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्यार की बातें फिल्म से, संगीतकार बुल्लो सीरानी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
5: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
6: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

मैडम जोरू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और कमल बारोट की आवाज़ों में। शेवन रिजवी ने इस गीत को लिखा था और बुलो सी रानी ने इस गीत को संगीत से संवारा था। और इस गीत के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने जोगन फिल्म से लिया था, गीता रॉय की आवाज़ थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संगीतकार बुलो सी रानी के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। महसूस कीजिए उस दौर के महक को।

0: था। लीजिए अब सुनिए सन ऑफ हातिमताई फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज।
1: आज तेरे सामने झूम के हम,
0: संगीतकार हैं बुलो सिरानी।

राजपुताना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। इस गीत को जीएस नेपाली ने लिखा था और बुलुसी रानी ने संगीत से संवारा।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में सन ऑफ हाथीमताई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे शादाब और संगीतकार थे बुलो सिरानी। अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आपने सुना सविता सिंह के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण। इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम केंद्र से रिले कर रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।
1: राजा रोहित का

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। लेकिन हम ईश्वर से ये भी दुआ करते हैं कि देने वाला इन सब के साथ साथ हजार खुशियां दे आपको। जी हाँ, सुप्रभात आप सभी को, और आज के इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ऐसा कथन है कि सही शिक्षा से ही समाज की बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। और इस सुविचार के बाद अब आइए एक नज़र डालते हैं 6 मई को भारतीय इतिहास में घटने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आपको बता दें कि 6 मई को 2004 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 2010 में आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सांसदों को मिलने वाली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की संवैधानिक वैधता को यह कहकर बरकरार रखा कि संसद के पास इसके तहत कोष आवंटित करने की वैध शक्तियां हैं। इस योजना के तहत सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। श्रोताओं, 6 मई को 1944 में महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस से बिना शर्त रिहा किया गया, ये उनकी आखिरी कैद थी। 1948 में आज ही के दिन भारत ने सुरक्षा परिषद की कश्मीर में यूएन पर्यवेक्षण वाली योजना को खारिज किया। 1967 में आज ही के दिन जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और 6 मई को 2000 में सौरव गांगुली को CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और अब जानकारी 6 मई को जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि 1861 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। 1937 में आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व 30वें मुख्य न्यायाधीश सम पीरोज भरूचा का भी जन्म हुआ है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं मिजोरम के 3रे मुख्यमंत्री लाल धनहवला, इनका भी जन्म आज ही हुआ। भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म भी 1964 में, जी हां, 6 मई को हुआ। और 6 मई को 1983 में प्रसिद्ध भारतीय राइफल निशानेबाज गगन नारंग का भी जन्म हुआ है।

और अब डालते हैं नज़र 6 मई को दिवंगत हुए कुछ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों पर। तो आपको बता दें कि 1946 में आज ही के दिन प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन हो गया। पंजाबी भाषा के विख्यात कवि शिव कुमार बटालवी का निधन भी 1973 में आज ही के दिन हुआ। भारत के 8वें मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव का निधन भी आज ही के दिन हो गया। भोजपुरी फिल्म निर्देशक, जिन्होंने नदिया के पार जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जी हां, गोविंद मुनीश का निधन भी 6 मई को 2010 में हुआ। और आपको बता दें कि 6 मई को 1589 में मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में से एक महान संगीतकार तानसेन का भी निधन हो गया था।

की बात अगर हम करें दिवस मनाने की, तो आपको बता दें कि 6 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे यह दिवस मनाने का उद्देश्य है शरीर के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देना और बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक डाइट कल्चर का विरोध करना। जी हाँ, बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक डाइट कल्चर अगर आप अपनाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और श्रोताओं, 6 मई को विश्वभर में विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 6 मई को ही मनाया जाता है। तो नमस्ते रोहतास के पहले चरण में हमने आपके साथ साझा किया आज के दिन का इतिहास और सुविचार, और अब चलिए सुन लेते हैं एक भक्ति रचना। तृप्ति शाकिया की आवाज़ है, सरदुल राठौर ने इसे लिखा है, राजेश गुप्ता का संगीत है और एल्बम है गणपति की शरण में जो आता है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: इस विज्ञापन के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और श्रोताओं, अब हम डालते हैं एक नज़र स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। सबसे पहले हम लेते हैं गतिविधि रोहतास जिले की। बिहार सरकार के निर्देशानुसार रोहतास जिले में जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन प्रारंभ किया गया है। यह प्रक्रिया 19 मई 2026 से प्रारंभ होगी और प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायतवार आयोजित की जाएगी। रोहतास जिले में सहयोग शिविर आयोजित किए जाने के संबंध में कल दिनांक 5 मई 2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास ने अपनी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। ये अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक रोहतास के साथ संयुक्त अध्यक्षता थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर सहयोगी शिविरों को सफल आयोजन करने हेतु तैयारियों की समीक्षा करने और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के संबंध में था। जिला पदाधिकारी ने समीक्षा में निर्देश दिया कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पूर्व से संचालित व्यवस्था के तहत प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को भी विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर जन शिकायतों का निष्पादन निरंतर जारी रखा जाएगा।

whatsaureel@gmail.com इस ईमेल पर अपने नाम, पता एवं मोबाइल नंबर के साथ भेजना है। रील भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 है। रील को गूगल ड्राइव पर भी आप अपलोड कर सकते हैं और उसका लिंक ईमेल पर भेज सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। श्रोताओं, बिहार राज्य के कैमूर ज़िले में गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है। कैमूर ज़िले में HPCL, BPCL एवं IOCL तीन कंपनियों के अंतर्गत कुल 19 गैस एजेंसी कार्यरत हैं। HPCL के 4, BPCL के 5 और IOCL के 19 गैस एजेंसी हैं। कल दिनांक 5 मई को कैमूर ज़िले में कुल 6,096 गैस सिलेंडर उपलब्ध थे, जिसमें 2,171 गैस सिलेंडरों का वितरण कर दिया गया और वितरण जारी भी है। कैमूर ज़िले में कुल 3,027 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। गैस की समस्या के लिए कैमूर ज़िले में नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है, जिसका मोबाइल नंबर है 06184222080। नियंत्रण कक्ष में दिनांक 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 769 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुल 726 शिकायतों का निराकरण भी किया जा चुका है। आगामी सहयोग शिविर की सफलता हेतु भभुआ अनुमंडल में भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक। कल दिनांक 5 मई 2026 भभुआ अनुमंडल कार्यालय में आगामी सहयोग शिविर के सफल आयोजन और क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैमूर जिले के अनुमंडल के सभी प्रखंडों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिविर के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के संग्रहण के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए, ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के पंजीकरण में कोई असुविधा ना हो। अनुमंडल पदाधिकारी कैमूर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का केवल संग्रहण ही नहीं, बल्कि उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करना प्राथमिकता होना चाहिए। सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शिविर के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। कैमूर जिले में लंबित यातायात चालानों के निपटारे हेतु बड़ी पहल नेशनल लोक अदालत में ई चालान मामलों को शामिल करने का निर्णय लेकर हुआ। बिहार सरकार द्वारा आम नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए लंबित यातायात चालानों के त्वरित निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अब ई चालान मामलों को भी शामिल किया जाएगा। परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य भर में लंबित ई चालानों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। अब वाहनों पर जाति आधारित स्लोगन लगाने पर सख्त कार्रवाई का बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है निर्देश। जी हां, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर वाद प्रवीण छेत्री एंड स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर के निर्णय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वाहनों

रोहतास जिले में शेरशाह सूरी महोत्सव 2026 पर सासाराम में 21 एवं 22 मई को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव को लेकर रील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशीष रंजन ने बताया कि जिला पदाधिकारी महोदया के निर्देश पर जिला प्रशासन रोहतास की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रील शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व व कृतित्व विषय पर बनाना होगा। रील की अवधि 30 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड तक रहेगा। रील शेरशाह सूरी महोदया

पर जाति आधारित स्लोगन लिखना लगाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 96, 111, 2E, 177 एवं 179 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे स्लोगन का उपयोग कानून का उल्लंघन है और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन कैमूर द्वारा सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के निर्गमन की तिथि से ही एक माह के भीतर अपने वाहनों से किसी भी प्रकार के जाति आधारित स्लोगन को अविलंब हटा लें। निर्धारित अवधि के पश्चात यदि ऐसे स्लोगन पाए जाएंगे तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी विधिक कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

रोहतास जिले में जमीन की खरीद बिक्री के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक पहल किया गया है। अब जमीन खरीदने से पहले खरीददारों को संबंधित जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू हो जाएगी। रोहतास के अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन सासाराम में किया जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से एक दिवसीय जॉब कैंप लगेगा और जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश तिवारी ने बताया है कि नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ओल्ड जीटी रोड कुशवाहा भवन में 9 मई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें एमबीए लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जीडीए सेमी नर्सिंग पद के लिए 50 रिक्ति के विरुद्ध आवेदकों का चयन किया जाएगा। जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर है। आवेदक के पास बायोडाटा, पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोटी फोटो, शैक्षणिक योग्यता, बैंक पासबुक होना अनिवार्य होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच एवं शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ANM GNM होनी चाहिए और पुरुष और महिला आवेदक दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। कल रात के आंधी पानी के बाद घंटों गुल रही बिजली। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह आंधी आने से पोल और तार भी जर्जर हुए हैं, जिन्हें बिजली विभाग द्वारा यथाशीघ्र सही कर देना जरूरी है। कैमूर जिले के मोहनिया में जीटी रोड से सटे सर्विस सड़क को बेहतर व सुरक्षित बनाने के लिए NHAI ने मरम्मत व सुदृढ़ीकरण कार्य में तेजी लाया है। अब सर्विस रोड का होगा कायाकल्प। कैमूर जिले में सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था होगी सुदृढ़, बायोमेट्रिक सिस्टम अब लागू होगा। और श्रोताओं, इन गतिविधियों के बाद, जी हाँ, स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम सुनवा दें आपको एक गीत। तो चलिए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में तीसरी कसम फिल्म से लिया गया ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुकेश की आवाज़ में अभी आपने तीसरी कसम फिल्म का ये गीत सुना। और अब आइए डाल लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नज़र। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत को बिहार के सीएम ने कंपनी से की है बात। सेतु का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया हवाई सर्वेक्षण। निर्माणाधीन अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का भी लिया जायजा, दिए निर्देश। श्रीकृष्ण सेतु पहुंचने के लिए मुंगेर से घोरघट तक 24 किलोमीटर का कल महाजाम लगा, जिससे लोग परेशान थे। और अब यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा किया गया फ्लैग मार्च। कल सम्राट मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, गांधी मैदान में भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री भी आएंगे। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू के 14 व भाजपा के 15 मंत्री लेंगे शपथ। 24 घंटों में दिन में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। और इसी के साथ श्रोताओं, अब आइए डाल लेते हैं खेल जगत की गतिविधियों पर एक नज़र। तो आज 6 मई को पंजाब किंग्स का मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तो आज का ये आईपीएल मैच है बेहद ही खास। और आपको चलते चलते मौसम के बारे में बता दें तो आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोहतास जिले में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान, फूल फल झड़ना, कीटों प्रकोप वगैरह से नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको देखते हुए बचकर रहने की सलाह दी जाती है। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद

0: नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से

0: मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जल मार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया।

0: लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। इस देशभक्ति गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आनंद राज आनंद।

अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर के स्वर में इंडियन फिल्म का ये देशभक्ति गीत। इसी के साथ ही हमारा आज का देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

पसंद आपके कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तेजाब फिल्म के गीत से। और तेजाब फिल्म का ये गीत जो कि अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की आवाज़ों में है, इसे सुनना चाहा है कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मानवित ने। तो बिल्कुल तेजाब फिल्म का ये गीत जो कि आपकी पसंद का है उसे हम सुनवाने जा रहे हैं। और कोई सा भी गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा के हमारे ये श्रोता जिनके नाम हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार वैरागी। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं तेजाब फिल्म का ही यह गीत जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विज्ञापन के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम पसंद आपकी में। और पसंद आपकी कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की बारी है, उन्होंने सुनना चाहा है मन फिल्म का।

गीत उदित नारायण और अनुराधा पौजवाल की आवाज़ में। जी हां, आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा कांबड़े, नीला और विपुल कांबड़े। इनके परिवार में एक और सदस्य हैं मीना कांबड़े, और ये हमारे श्रोता तेलंगाना भुवनगिर विद्यानगर से हैं, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, अज़ीज़ भाई और अब्दुल बाबा अनजाना। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं मन फिल्म में उदित नारायण, और उदित नारायण की ही आवाज़ में समीर का लिखा हुआ ये गीत संजीव दर्शन का संगीत है, और बोल है चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बठिंडा रोड डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप सभी ने हमें इस पत्र में कुरुक्षेत्र फिल्म के गीत के लिए फरमाइश भेजा है लिखकर, और आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी कदथल से हैं कानू गोपाल, माहेश्वरी, प्रवल्लिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गीत, जिसे गाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने है। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे कुरुक्षेत्र फिल्म से, और इस गीत को गाया था कुमार सानू के साथ अलका याग्निक ने। जी हाँ श्रोताओं, प्यार बेहद ही खूबसूरत चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो दुनिया को दिखा कर नहीं किया जाता, बल्कि ये तो वो चीज़ है जो दिल से निभा कर किया जाता है। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता देते हैं हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो इस पते पर अपनी फरमाइश के गीत लिखकर पत्र में हमें भेज दीजिए और हम उसे सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यहीं दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: उनके रिजल्ट्स हों या फिर स्टॉक मार्केट, हाल के दिनों में तीनों ने ही सरप्राइज देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी मौसम अचानक से करवट ले लेता है, कभी नतीजे उम्मीद से अलग आ जाते हैं और मार्केट भी अपने ही मूड में चलता दिखाई दे रहा है। शायद ये सब यही समझा रहे हैं कि जिंदगी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल है और इसी में उसका मजा भी है। तो बस आप तैयार रहिए सरप्राइजेस के लिए और साथ ही पॉजिटिव भी रहिए, क्योंकि हर नया मोड़ कुछ ना कुछ सिखा जाता है। जुड़े रहिए 100.1 FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्ली में उर्वशी के साथ।
1: मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। 1 करोड़ गन्ना किसान होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल। गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। और मौसम विभाग ने आज बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे लगभग 1 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जैसे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश

0: अध्यक्ष संजय सारावगी ने बताया कि पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान जी हों, गिरिराज जी हों, नित्यानंद राय जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 15 और जदयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। भाजपा कोटे से संभावितों में विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, रमा निषाद, संजीव चौरसिया, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर और अरुण शंकर प्रसाद के नाम शामिल हैं। जदयू कोटे से अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्वेता गुप्ता, अतिरेक कुमार और रत्नेश सदा के मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इधर लोजपा रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पटना के 1 आणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से लोक सेवक आवास नाम का ही उपयोग किया जाएगा। इससे पहले राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया था। बिहार पुलिस ने इस वर्ष मार्च महीने तक 99,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार ने बताया कि इनमें कई कुख्यात अपराधी और नक्सली शामिल हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस अवधि में 24 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है।
2: वर्ष 2026 में 99,158 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो प्रोफेशनल अपराधी हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। जो ऐसे अपराधियों की संख्या भी 3,483 है, जो पूर्व वर्षों में नक्सल अपराधों में कुछ वैसे अपराधी फरार थे, नक्सली, उनकी भी मार्च, फरवरी और जनवरी तीनों माह में गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 27 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अपहरण के मामलों में जो पूर्व में संवेदनशील कांड दर्ज हुए थे, इसमें भी 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस वर्ष के प्रथम तिमाही में 1,086 अवैध अग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं।
0: अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने के दौरान भ्रष्टाचार के 51 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 46 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने 208 प्रखंडों के नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार 6,656 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इनमें प्रत्येक महाविद्यालय में 32 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक विषय में 2-2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज में 12-12 शिक्षकेतर कर्मियों की भी नियुक्ति होगी। गौरतलब है कि प्रदेश के 336 प्रखंडों में पहले से ही डिग्री कॉलेज हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की भी संभावना है। इसी अवधि में अररिया, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित होने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों के लिए वैकल्पिक तौर पर नाव और जेटी की सुविधा की है। प्रशासन की ओर से जिले के बरारी घाट और बाबूपुर घाट तथा नौगछिया के महादेवपुर घाट पर नाव की निःशुल्क सुविधा शुरू की गई है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने सरायगढ़ और देवघर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन सुपौल, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और बांका के रास्ते देवघर तक चलेगी। ये ट्रेन कल से 31 मई तक रोजाना संचालित की जाएगी। पटना एम्स का दूसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। एम्स पटना के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण धीमान ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 27 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और संस्थान निकाय के सदस्य सांसद रविशंकर प्रसाद और तारिक अनवर विशिष्ट अतिथि होंगे। विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए भोजपुर जिला समाहरणालय सभागार में सहायक निर्वाची पदाधिकारी और अन्य चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने प्रशिक्षण दिया। उपचुनाव 12 मई को होगा। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के भितहा पंचायत में स्थित वृद्धाश्रम से पुलिस ने 15 बुजुर्गों को मुक्त कराया है। अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की पिटाई करने समेत कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान आश्रम के संचालक शिवम कुमार और एक अन्य कर्मी काजल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीएम ने बताया कि सभी बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान उमंग केंद्र भेज दिया गया है।
1: पूरी टीम यहाँ पर आई है और छापेमारी का काम किया है। हम लोगों ने इनिशियली देखा कि जब यहाँ आए तो बाहर ताला मार के रखा हुआ था, अंदर भी ताला मार के रखा हुआ था। रजिस्टर जब हम लोग देखे हैं तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक समय यहाँ पे 38 कभी 46 लोग हुआ करते थे और आज के डेट में मात्र 15 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें जो नियम है कि आप अगर किसी को रखते हैं और उनको रिहेबिलिटेट करना होता है तो एक कमिटी होती है, उसका अप्रूवल लेते हुए उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही रिहेबिलिटेट कर दिया है बिना किसी के अप्रूवल के। पूछने पर जो स्टाफ है यहाँ के वो बता रहे हैं कि वो उनको घर भेज दिया गया है या फिर वो तीर्थ करने चले गए, तो इससे हम लोग को संदेह हुआ।
0: अररिया जिले की घूरना थाना क्षेत्र की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप से 1215 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। शिवहर पुलिस ने विभिन्न कांडों के वांछित अपराधी वासुदेव पासवान पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों को आसूचना के आधार पर छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पटना जिले के बेऊर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी पप्पू कुमार उर्फ पप्पू राय को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में जिले के नदी थाना क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या के मामले में अपराधी की तलाश थी। ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले एक संवेदक को 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग के अनुसार सारण जिले की 2 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में अनियमितता मिली थी। जांच में प्राक्कलन के अनुरूप काम नहीं करने और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। राज्य के 5 खिलाड़ियों सुधांशु

शेखर, दिलीप कुमार, सारांश कुमार, सोनी कुमारी और साक्षी कुमारी का चयन भारतीय योगासन टीम में हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेंगे। बिहार फुटबॉल संघ की बैठक 24 मई को पटना में आयोजित होगी। बैठक में 26 दिसंबर से पहले संघ का चुनाव संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार की ग्रामीण सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होंगी, DPR तैयार। दैनिक जागरण ने विक्रमशिला सेतु पर शीर्षक दिया है, BRO ने की सेतु की जांच, CM ने किया हवाई सर्वे। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, 3 महीने में हत्या लूट अपहरण के 99,158 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 3,483 कुख्यात और 27 नक्सली। प्रभात खबर ने लिखा है, 60 लाख में नीट पास कराने का सौदा, डॉक्टर पुत्र समेत 4 और धराए। आज अखबार लिखता है, सूबे में होगा अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, ममता बनर्जी ने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा, कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं हराया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया, 1 करोड़ गन्ना किसान होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल, गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। पटना के एक अरण्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। और मौसम विभाग ने आज बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: किसान भाइयों एवं बहनों, अब सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना हुआ और भी आसान।
2: IVRS सुगम कॉल सेंटर के माध्यम से सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं यथा खाद्यान्न अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पैक्स सदस्यता एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।
1: कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो तुरंत कॉल करें।
2: टोल फ्री नंबर 1800-3454-110 पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहकारिता विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
7: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम व्यूरर में अब आइए एक नजर डालते हैं आज हमारे

केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार का प्रसारण, जी हां 9:30 पर। और सुबह 10:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी समाचार के लिए।

श्रम संसार, ये साप्ताहिक कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 10:05 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोक की। रसधार कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित। सुबह 11 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम रंग तरंग के लिए। अपराह्न 12 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 12:05 पर सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण, ये 2 तक जारी रहेगा। 2:05 पर इलाकाई खबरें, 2:10 पर रोजगार सूचना और 2:15 पर मध्यान्ह समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 2:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रमों का प्रसारण शाम 5 तक। शाम 5 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर एक बार फिर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम ब्यूरो में आज के कार्यक्रमों का ब्यौरा। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। शाम 5:30 पर सुनवाएंगे आपको महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6 प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल में पारस आप सुनेंगे शाम 7 से। शाम 7:15 पर सुनिएगा शांतिकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए। 7:50 पर आप सुनेंगे फ़ोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हेलो मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 7:50 से रात 8:45 तक। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात हम आपको सुनवाएंगे रोजाना की तरह आज भी 8:45 पर। रात 9 सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम सुर सौरभ। 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से हम रिले करेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान लेकर हम उपस्थित होंगे रात 10:55 पर। रात 11 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण और इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि अब हम आपको सुनवाएं कुछ गीत। जी हाँ, 9:10 हुए हैं और गीत मालिका कार्यक्रम में हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं हिंदी फिल्म संगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म से।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी और कुमार सानू की युगल आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था। जी हाँ श्रोताओं, ये फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बेहद ही रोमांटिक फिल्म रही और

ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लंबे समय तक चलने वाली फिल्म थी। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिलीज के साथ ही पूरे भारत में कई सालों तक ये फिल्म कई सिनेमाघरों में चलती रही। और रिकॉर्ड की बात करें हम तो ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में तो पिछले 20 सालों तक चलती रही। तो बेहद ही उम्दा फिल्म का ये उम्दा गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और इस फिल्म के बाद ही जो राज और सिमरन नाम हैं ये भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। आज भी कई बच्चों के नाम राज और सिमरन रखे जाते हैं, शायद इसी फिल्म की ये वजह रही है। तो चलिए इस ब्लॉकबस्टर रोमांटिक हिंदी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के बाद सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत गर्व फिल्म से, उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शब्बीर अहमद के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत है।

हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको छुपा लेंगे। गर्व फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की युगल सुरीली आवाज़ में, और श्रेया घोषाल की ही आवाज़ में एक और गीत हम लेकर आपके समक्ष हाजिर होने जा रहे हैं। जी हाँ, सिंघम फिल्म का ये गीत है, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अजय अतुल का संगीत है।

जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। राजा भैया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। मान सिंह दीप का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत नदीम श्रवण का, और गीत मालिका कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों, अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी। और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी, सो अनुष्का बन गई

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था फिल्म बैंड

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने NH10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है। इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग

0: ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों की रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा। इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सोहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अभी हम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार।
3: कार्यक्रम श्रम संसार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, 1 मई को भारत समेत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, जिसे हम सभी मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। अधिकांश देशों की तरह मई दिवस पर सार्वजनिक और सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इस दिवस का बहुत ही महत्व है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यूरोप में इसे वसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो उर्वरता और जीवन शक्ति का मौसम। मौसम के इस बदलाव से नवीनीकरण और आशा की भावना जागृत होती है, क्योंकि हम अपने चारों ओर प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। मई दिवस एकता और एकजुटता का भी प्रतीक है। यह दिवस समाज के लिए श्रमिकों के योगदान और बलिदान का सम्मान करता है। इस दिन का महत्व उस समय से

0: है जब अमेरिका में श्रमिकों ने कठोर श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन, खराब कार्य परिस्थितियों और भयावह कार्य घंटों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू। श्रोताओं, श्रम संसार के आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी राहुल पटेल जी, जो इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान पर लेख भी लिखते हैं। लगभग हर माह इनके द्वारा मुफ्त मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है। तो राहुल पटेल जी, इस वक्त कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से और साथ ही साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है।
1: धन्यवाद। मैं भी इसके लिए काफी आभारी हूँ और मौका देने के लिए मैं आगे भी आपसे उम्मीद करता हूँ।
0: राहुल पटेल जी, हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों मेहनतकश मजदूरों को समर्पित है जो अपने श्रम से समाज और अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करते हैं। मजदूर दिवस से जो अभी पिछले सप्ताह मनाया गया, ये इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है?
1: आप अगर नोटिस कीजिएगा तो कुछ अदर एक सेट के लोग तरह तरह की जयंतियाँ मनाते हैं, दूसरे सेट के लोग कोई दिवस मनाते हैं, तीसरे सेट के लोग अपने को किसी न किसी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं
0: जी।
1: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मान लीजिए जैसे मजदूरों के केस में ही जब मई दिवस के नाम पर एक आइडेंटिटी है कि हम सभी मजदूर हैं
0: जी।
1: मजदूर का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कि इंडियन लेबर लॉ क्या कहता है, तो वो लोग एक तरह से एक दूसरे से पूरे भारत में पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जैसे कि अगर किसी देश का, भारत का भी, कहीं का अगर कानून या कहीं का इंडस्ट्री अगर उनके हितों के खिलाफ काम करता है या हितों के अनुरूप काम नहीं करता है तो संगठनात्मक रूप से वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लिखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। यह तभी होता है जब वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं मई दिवस के नाम पर और किसी भी तरीके से एक आइडेंटिटी के रूप में
0: जी।
1: इसलिए यह महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पीड़ित पक्ष की बातें बाकी लोगों तक पहुंचे ताकि आम जनता सरकार के कार्य प्रणाली के बारे में आम राय बना सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है।
0: भारतीय संविधान में श्रमिकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जो सरकार के द्वारा उनके हितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका वे लाभ कैसे ले सकते हैं और वर्तमान में उनके हितों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
1: आपने बहुत उचित सवाल पूछा क्योंकि मैंने फील्ड में देखा है कि कई बार लोगों को पता नहीं रहता है कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे कि एक ई श्रम पोर्टल चलता है, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकार जो है लगभग 10 योजनाएं चलाती हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको गिनवा देता हूं।
0: जी, बिल्कुल।
1: एक है वन नेशन वन राशन कार्ड। आपको याद होगा कि जो अभी कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग जो इंटरनल माइग्रेशन करके दूसरे स्टेट्स में जॉब करते हैं, जैसे बिहार के लोग, खास बिहार यूपी वगैरह के
0: जी,
1: तो वो बाहर फंस गए थे और उनको खाने पीने की बहुत समस्या हो गई। ये वन नेशन वन राशन कार्ड है कि आपका राशन कार्ड कहीं भी किसी भी स्टेट का बना हो, आप दूसरे स्टेट में भी राशन उठा सकते हैं। ऐसी ये बहुत अच्छा स्कीम था। बिहार सरकार उसमें शामिल नहीं था। मैंने बिहार सरकार को एक पत्र उसी दौरान लिखा था इस पर, वन नेशन वन। उस समय वो रेसिस्ट कर रहा था नीतीश सरकार की, मैं नहीं शामिल हूँगा। मैंने वो लिखा था कि वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल होने से ये फायदे हैं और उसके अलावा भी मैंने रिकमेंडेशन किया था कि जिस प्रकार से ATM कार्ड रहते हैं तो वो हो सकता है कि एक पेरेंट कार्ड हो, एक चाइल्ड कार्ड हो, तो राशन कार्ड एक हो सकता है कि जहाँ जो बाहर काम कर रहा है उसके पास भी हो चाइल्ड कार्ड और यहाँ पे जो हैं उनके परिवार बचे हुए उनके पास भी। ये बहुत अच्छा स्कीम है
0: जी।
1: इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
0: जी,
1: PMJAY, जो कि आप जानते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड बनता है और आयुष्मान कार्ड से रियली काफ़ी लोग बेनिफिट हो रहे हैं। हालांकि इसके अनेकों, मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर उनका कैंसिल भी कर दिया जा रहा है लाइसेंस
0: जी।
1: ये भी बहुत अच्छा है। इवन सरकार ने एक और अच्छा कदम जोड़ दिया है कि आप मजदूर हो ना हो, आपका जो राशन कार्ड ये वाला रहता है, प्राथमिकता वाला राशन कार्ड रहता है, उसको क्या तो कहते हैं, भूरा राशन कार्ड या ऐसा कुछ रहता है, लाल राशन कार्ड, तो अगर उसमें नाम नहीं है और 70 वर्ष आपकी उम्र पूरी हो चुकी है तो भी आपका लाभ ले सकते हैं आयुष्मान कार्ड। ये बहुत अच्छी है कि मतलब किसी भी सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस के बावजूद भी आप लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो रियली बहुत ही अच्छा है कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी बीमा करा सकें किसी प्राइवेट संस्थान या सरकारी संस्थान से, तो 1 रुपया या इस तरह का कुछ लेती है सरकार या 14 रुपये लेती है
0: जी,
1: बीमा कर। इसके अलावा चौथा है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। हालांकि मैं जो गिना रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये NDA सरकार या UPA, बहुत पहले से चला आ रहा है
0: जी।
1: पर ये लोगों के लिए हैं, इनके बारे में जाना। तो मनरेगा नाम से प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो मैं अभी नाम ले रहा था, और उससे इस तरह के कोविड पीरियड जैसे केसेस में या बहुत सारे लोग

0: जो गांव में रह जा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए आहार कोड़ना, पाइन कोड़ना और इस तरह के रोजगार देके उनको कुछ मिनिमम देने का है। हालांकि फिर उसमें भी फंड बट है कि लोग मशीन से काम करा ले रहे हैं और कुछ आधा पेमेंट या ये पेमेंट जो है मजदूरों को दे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली लॉडेड, बहुत प्रशंसनीय कदम है कि किसानों की जो MSP की मांग है और किसान तरह तरह के समस्याओं में जूझ रहे हैं, उनके पास अगर थोड़ा भी ज़मीन उनके नाम से है तो उनको लगभग 6,000 रुपये साल के एक सोशल बेनिफिट स्कीम के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें मिलता है। बहुत बढ़िया है, हर साल मिल रहा है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास ये अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है आवास योजना, जिसके तहत काफ़ी गरीब लोग बिहार में, तो देखिए तो जो खपड़े के मकान हैं लगभग गायब हो चुके हैं, वो इस तरह के आवास योजनाओं से लाभ लेकर।
1: राहुल पटेल जी, अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, तो यह जो योजना है वो वैसे लोगों के लिए है जो गरीब हैं लेकिन उनके पास भूमि होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो इस योजना का लाभ कैसे ले सकते?
0: रियली ऐसा नहीं है कि केवल भूमि जिसके पास वही लोग लाभ ले सकते हैं, यह बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और अर्बन क्षेत्रों, ये जो शहरी क्षेत्र है, दोनों में यह है कि अगर जो लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके रिकमेंडेशन पर अगर यह होता है कि इनके सर पर छत नहीं है तो उनको मिलता है आवास
1: जी।
0: ऐसी बात नहीं है कि भूमि रहने पर ही मिलता है
1: जी।
0: इसके अलावा और भी आगे अगर आप कहेंगे तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर साइड आत्मनिर्भर निधि योजना है, जो कि ये जो ठेला वेला लगाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जो कि आप देखते होंगे कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको सरकार बैटरी चालित रिक्शा और या फिर सोशल बेनिफिट स्कीम के तहत कुछ ना कुछ हर एक महीने एक मिनिमम अमाउंट देती है। वो रियली बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। आप देखेंगे कि रोजगार से संबंधित, जो कि रियली मजदूरों के लिए ये है काम करेगा, तो रोजगार से संबंधित भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इस तरह की चीज़ें हैं जो सरकार चाहती है कि आप जो हैं आगे आएं और आपको कुछ पैसा दिया जाए। मुद्रा लोन पे तो किसी कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है और लोन लेते हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है कि लोगों को मैनेजमेंट की कोई जानकारी नहीं होने की वजह से जो भी लोन मिलता है वो उसी को अपना पैसा समझ लेते हैं और खा जाते हैं। ये रियली ट्रेनिंग की बात है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब पैसे लोन में दे रही है तो ट्रेनिंग की, प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। इवन बिहार में एक, आप जानते होंगे कि एक उद्यमी योजना चलता है, हर एक साल दिया जाता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लौटाना रहता है, पर अधिकांश केस में 5 लाख भी नहीं लोग लौटाते हैं, और सरकार यह मान के चलती है कि कुछ फेल्योर्स होंगे
1: जी,
0: पर यहाँ फेल्योर्स की संख्या ज़्यादा है। कारण यह है कि लोगों को पैसे की ज़रूरत है और लोगों को मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का कोई ये नहीं है, तो जो भी उससे प्रॉफिट से उनको काम चलाना चाहिए था, पर वो लगते हैं मूल से ही, जो मूलधन है उसी से काम चलाना है, और हम तो वो पे नहीं करते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं। मजदूरों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है स्टूडेंट्स में, कौशल विकास योजना, जहाँ पे हर एक प्रखंड स्तर पे और कहीं कहीं अन्य जगहों पर भी बहुत, इसके लिए ब्लॉक में ही इसके लिए एक अलग से व्यवस्था रहती है, जहाँ स्टूडेंट्स आके कंप्यूटर या अन्य दूसरे चीज़ें सीख सकते हैं
1: जी।
0: उसमें भी इफ एंड बट है, लेकिन ठीक है, योजना है
1: जी,
0: आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं। जन शिक्षण संस्थान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये देखिए, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ये सब जो हैं इतना बढ़िया है। मुझे याद है कि एक बढ़ई मेरे यहाँ फर्नीचर का काम करते थे, मैं उस समय बाहर जॉब करता था, और मेरे जब घर आए तो वो बता रहे थे कि इस योजना के तहत सरकार ने बहुत ही आधुनिक किस्म के टूल्स दिए हैं जिससे वे अब अपना काम जो है जल्दी कर सकते हैं। यह बहुत प्रशंसनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब वो चलता है, कितना प्रभावकारी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो उस समय था तो भाई मान लीजिए कि हम आरी से काट रहे हैं, अब जो है बिजली चालित अगर आरी मिल जाए तो हम काम जल्दी कर सकते हैं
1: जी,
0: और हम जल्दी काम करने का ये नतीजा होगा कि जहां मैंने एक काम हाथ में लिया था अब दो काम हाथ में ले सकते हैं, तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, ये बढ़िया बात है। इसी तरह से अगर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी फ्यूचर स्किल्स प्राइम नाम से एक योजना चलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग देता है युवाओं को। और भी हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, नेशनल कैरियर सर्विस है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो कि इसी से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड है, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन स्कीम है, जहाँ पे बंधुआ मजदूरों को अगर उनके बारे में पता चल जाता है, और जो कि एक रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत ही वाइड स्प्रेड समस्या है कि लोग अपने आर्थिक स्थिति से वरने के लिए किसी से लोन ले लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो फिर जो वो है अपने यहाँ काम करने लगता है, काम करवाने लगता है मालिक, और उसको पैसे भी नहीं देता है और वो सूद इतना बढ़ते जाता है कि वो जिंदगी में नहीं

0: चुका पाता, ये पहले बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन आज के डेट में सरकार के प्रयासों से ये काफ़ी कम हुआ है। पता चलने पर सरकार जो है और कुछ एनजीओज भी हैं उनको वो छुड़ा लेते हैं, उससे बॉन्डेड से बाहर करते हैं। इसके अलावा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस तरह के बहुत सारे स्कीम हैं। तो अगर मतलब जो उनके अलग अलग ऑफिसेज हैं, जैसे लेबर कार्ड बनता है, लेबर का इसके लिए अलग ऑफिस है, वहाँ पे मजदूर चाहें तो जा सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधि या जो संगठन उनके माध्यम से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर रियली यह समस्या है कि कहीं एकीकृत रूप से कोई लिस्ट नहीं है, जगह जगह पंचायत स्तर पे पंचायत भवन में लिस्ट आएंगे, भाई आपके लिए ये योजना है। अगर ऐसा कुछ रहता कि ये योजनाएं आपके लिए हैं और आप इनसे इनसे इन विभागों से संपर्क कर सकते हैं, तो ये काफ़ी प्रशंसनीय कदम होता कि गांव के लोग आसानी से इस सूचना को पा पाते, अब उनको किसी का मुंह नहीं ताकना होता। जी मैं यही कहूँ।
1: तो राहुल पटेल जी, आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया, इनमें से बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके बारे में मजदूर आज तक नहीं जानते हैं, तो उनके अंदर जागरूकता कैसे पैदा होगी और इन योजनाओं के बारे में वो जानेंगे?
0: अभी भी मैंने यही जवाब दिया कि एक तो है कि जो स्वयं गर्दन तक काम में डूबा हुआ है, सरकार क्या कर रही है, क्या योजना ला रही है, एक उसको पता नहीं है, और दूसरा कि अगर पता लग भी जाए तो वो उस विभाग तक जाने के लिए उसके पास समय नहीं है, वो अपने में इतना व्यस्त है, अपने जीवन के संघर्षों में इतना व्यस्त। मैं यहाँ पे एक जुड़ा हुआ हूँ, किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं जो बिल्डिंग लेबरर्स संगठन चलाते, और वो बताते हैं कि उनके संगठन के लोग जो कहीं रोजगार हैं, जैसे ईंटा वीटा जोड़ते हैं, बढ़ई हैं, तो वो कहते हैं कि आप जाके मेरा फार्म भर दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है।
1: जी,
0: ये समस्या है। तो होना ये चाहिए था कि एक लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो जैसे मैंने बताया कि पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर जो सरकारी भवनें हैं, हर जगह लिस्ट टंगी रहती कि आपके लिए क्या क्या सरकार जो है क्या क्या योजनाएँ लेके आई है और किन से संपर्क करना है, ये बात। और दूसरा कि फील्ड वर्क, सरकार के जो कर्मचारी हैं वो फील्ड में जाके संगठनों से संपर्क करके ऐसे लोगों को पकड़ते हैं कि भाई आप मजदूर हैं, आपके लिए ये योजना है और आप चलिए हमसे निबंधन करा लीजिए और लाभ लीजिए। पर ये प्रयास नहीं है, अब ये सरकार की व्यवस्था फिलहाल यह है कि वे कहीं ऑफिस में बैठे रहते हैं, और आपको अगर पता है उस योजना के बारे में तो आपको जाना है। होना चाहिए था कि डोर सर्विस देना चाहिए था सरकार को, आखिर टैक्स ले रही है सर्विस देने के लिए ना सरकार, पर ऑफिस में बैठ के, और उसके पास फील्ड वर्कर हैं, ऐसा नहीं है। मतलब सरकार की यह व्यवस्था है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर कर्मचारी हैं जिनका ड्यूटी है कि वो फील्ड में जाएं, लोगों को पकड़ें, उनको लाभ दिलाएं, पर वे जाते नहीं, वे वेतन पाते हैं इसका पर वे जाते नहीं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर लगाम लगनी चाहिए सरकार के द्वारा।
1: जी राहुल पटेल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, मजदूर जो शब्द है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मजदूर किसे कहेंगे और किसे मजदूर नहीं कहेंगे, श्रम सभी करते हैं।
0: देखिए, इसको लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है कि मजदूर किसको कहते हैं। अनेकों संगठन, तरह तरह के संगठनों के नेता जो हैं वो लेमन टर्म में, आम भाषा में कह देते हैं कि सभी लोग मजदूर हैं। इवन जो मुख्य सचिव है, जो IAS है, जो SDM है, CO, सभी मजदूर हैं। लेकिन अगर लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, कानूनी भाषा में देखा जाए लेबर लॉ के अनुसार, तो ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट परिभाषा है कि कौन मजदूर हैं और कौन मजदूर नहीं है। सरकार के नज़र में जो अनस्किल्ड हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, जो सेमी स्किल्ड हैं, इस तरह के काम करने वाले लोग जो हैं मजदूर हैं, सिंपल भाषा में ब्लू कॉलर वर्कर। और जो मैनेज करते हैं, सुपरवाइजर हैं, जैसे जो सरकार में SDM रैंक के, मतलब क्लास बी और क्लास ए ऑफिसर हैं, या मान लीजिए साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, या प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, ये सारे लोग मजदूर की श्रेणी में नहीं आते हैं। इवन अगर प्राइवेट निजी संस्थानों में भी जो मैनेजरियल या सुपरवाइजरी का रोल प्ले करते हैं वो मजदूर की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, एक लूप होल क्या है कि कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारी जो इवन निजी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं भी। इसमें एक लूप होल यह छोड़ा गया है कि जो लोग गिग इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट है, गिग इकोनॉमी का मतलब यह हुआ कि जो कहीं अस्थायी रूप से काम नहीं करते, उनको किसी ने बुलाया कि आइए हमारे यहाँ काम कर दीजिए, मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा, 1500 रुपये दे दूंगा, ये गिग इकोनॉमी है। मतलब हमारे यहाँ जैसे सासाराम गोरक्षणी पर ठेहा है, मजदूर आते हैं काम करके चले जाते हैं, ये गिग इकोनॉमी है। या आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या इवन Tier 2 सिटीज़ में भी इस तरह के स्टार्टअप्स आए हैं, जहाँ पे अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि बिजली का कुछ समस्या आया है तो आप उनके ऐप पर जाते हैं और किसी को वो बुक करते हैं, तो आता है आपका काम करके चला जाता है, ये गिग इकोनॉमी वर्कर है। तो ऐसे लोग जो किसी ठेकेदार के माध्यम से, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनके माध्यम से अगर किसी फैक्ट्री में या किसी संस्थान में काम करते हैं और या फिर गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, वो मजदूर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब इसका रिपरकशन सुनिए, इसका क्या मतलब

0: लाभ हानि है, इसका सुनिए। जो व्यक्ति सरकार के नजर में कानूनी रूप से, कानूनी परिभाषा में मजदूर की श्रेणी में आता है, तो उस पर लेबर लॉ लगते हैं, श्रम कानून उस पर लगते हैं। मतलब श्रम कानून जो भी उनको रक्षा, उनकी रक्षा के लिए जो भी बेनिफिट देता है कि भाई आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे ESI एम्प्लॉयज इंश्योरेंस ये स्कीम जो है, इस तरह के बेनिफिट, या पेड लीव, अर्न लीव, ये सब जो है, सिक लीव, ये सब के जो फायदे हैं, या नंबर ऑफ आवर्स, कितना काम कर सकते हैं, कितना घंटा काम कर सकते हैं, ये सब लेबर लॉ के अंडर होने के चलते जो उसके डिफिनीशन में लेबर, परिभाषा में जो लेबर हैं सरकार के नज़र में, उनको ये लाभ मिलता है, पर जो मजदूर की परिभाषा में नहीं, उनको ये काम नहीं मिलता है। और इसमें जो क्लास ए ऑफिसर, क्लास बी ऑफिसर या मैनेजेरियल सुपरवाइजरी रोल वाले सेल्समैन लोग, तो वो तो बच जाते हैं, क्योंकि वो, उनको तो पहले से ही अच्छी सैलरी है और वो, उनका अपना एम्प्लॉयमेंट कोड रहता है, लेबर कोड नहीं रहता है। लेकिन ये जो गिग इकोनॉमी या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इन पर ये लगता नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। आपको मैं बता दूँ, एक आंकड़ा दे दूँ कि आज के डेट में स्वयं श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार देश में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ठेला से लेकर मुख्य सचिव तक, उसके 90% लोग जो हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, या असंगठित क्षेत्र में 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, और मतलब एवरेज कह लीजिए कि 5,000 रुपये के करीब कमाते हैं। इनमें भी जो असंगठित क्षेत्र में औसतन 5,000 रुपये कमाते हैं, जो संगठित क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं, मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में काम तो कर रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री, मान लीजिए मारुति फैक्ट्री, पर वहाँ भी ये ठेकेदार के थ्रू गए हैं, तो इनका औसतन जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है। अब सरकार का ही दूसरा एक आंकड़ा है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जीवन जीने के लिए 16,488 रुपये जो है एक परिवार को चाहिए, तो कहाँ से आएगा? अब व्यक्ति व्यक्ति काम करे तब आएगा, उतना भी नहीं पूर्ति होता। सोचिए कितनी बड़ी विकट आर्थिक स्थिति है लोगों की। यही नहीं, आज के डेट में यह चलन बढ़ते जा रहा है कि अगर हमको लूप होल से बचना है, मतलब लूप होल अगर हमको इस्तेमाल करना है, श्रम कानून का लूप होल जो है, इसको इस्तेमाल करना है, तो क्या कर लीजिए कि किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ठेके पर लोगों को रख लीजिए। ये ट्रेंड एकदम चल पड़ा है। आंकड़ा है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में आज के डेट में 42% वर्कर जो हैं इस तरह के वर्कर हैं, लेबर हैं, और वो श्रम कानून के सभी बेनिफिट से फारिग हैं, वंचित हैं।
1: जानकारी
0: हो के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन पर वो लेबर के, मजदूर के परिभाषा में ही नहीं है, तो लाभ ही नहीं ले सकते। औसतन आए 5,000 या 10,000 से, जहां सरकार स्वयं कहती है कि आपको 16,488 रुपये जीने के लिए चाहिए प्रत्येक मास, वो कैसे 10,000 में गुजारा कर रहे हैं? तो ये एक, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परिभाषा जो है बहुत ही स्क्यूड परिभाषा है, और इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए।
1: राहुल पटेल जी, वर्तमान में हमारे देश में श्रमिकों की क्या स्थिति है?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल में बेडा में काफ़ी वेतन के वृद्धि के लिए, और जहां काम करते हैं वो लोग, वहां पे बुनियादी सुविधाओं के लिए ये जो मजदूर हैं लेबर लॉ की परिभाषा से, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और काफ़ी कुछ हुआ। इवन संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भी विरोध करने का अधिकार है लोगों, आप धरना प्रदर्शन यहाँ मत कीजिए, कहीं दूर कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उनकी बातें जो हैं आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और आम लोगों में जो है आम राय नहीं बन पा रही कि सरकार काम कैसे कर रहा है। और इसलिए सरकार को अपने हितों के पक्ष में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का जरूर मौका देना चाहिए। एक दूसरा इसका पहलू यह भी है कि आप देखेंगे कि लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अकारण तो नहीं है, उनको रियली उनको समस्या है, तो एकमात्र सहारा बसता है विरोध प्रदर्शन।
1: राहुल पटेल जी, रोजगार के जो अवसर हैं उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है?
0: अब देखिए, यह सवाल जो है, भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े। वर्ल्ड बैंक सुझाव दे रहा भारत सरकार को कि हम आपको चीन की तरह इकोनॉमी बना देंगे अगर आप ये उपाय करेंगे, और भारत सरकार वैसे वैसे उपाय कर रही है, मेक इन इंडिया और वगैरह, स्टैंड अप इंडिया, उसी के प्रयास। लेकिन रियली धरातल पर यह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि चीप लेबर, मतलब अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो चीप लेबर और फाइनेंस और तरह तरह के जो माहौल होते हैं कि इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मौजूद नहीं है। वैसे में भारत चूंकि एक किसानों का देश है, तो वैसे में अगर हम फूड इंडस्ट्री को ही अगर आगे बढ़ाएं तो भारत में काफ़ी रोजगार जनरेट किया जा सकता है, और लोग रियली जब गांव में, अपने अपने गांव में ही रह के फूड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम खर्चे में वो, उनका अपना घर रहता है, कहीं बेसिक सेटअप नहीं करना, बाहर जाके किराया लेना वो वगैरह नहीं करना पड़ता है, बेसिक सेटअप। तो बहुत, जहां 16,000 का जो आंकड़ा है, 16,488 रुपये, उसके बजाय वो 10,000 में भी काम चला लेंगे, और अपना पूरे, मतलब आज आप जो बाहर कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उनके लड़के कहाँ से पैसा ला के वहाँ पहुँचते हैं, उस स्थिति तक पहुँचते हैं? ये कृषि से ही आते हैं, कृषि में मजदूर लगे हों या कृषि मालिक हों। तो कृषि क्षेत्र को रियली सरकार को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। टेक्नोलॉजी में

0: कोई खास रिसर्च तो हो नहीं रहा है कि हम लोग नए नए प्रोडक्ट बनाएं और वो दूसरे देशों को बेचें, इसलिए हमारा देश जो है मोस्टली कंज्यूमर बेस्ड कंज्यूमिंग कंट्री है
1: जी।
0: तो एक यही तरीका है कृषि को बढ़ा।
2: राहुल पटेल जी, आपने अपना वक्त निकाल कर हमसे बातचीत की और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से और सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, मई दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अभी हम बातचीत कर रहे थे समाज सेवी राहुल पटेल जी से। श्रोताओं, मई दिवस जिसे श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, श्रमिकों और श्रमिक आंदोलन की उपलब्धियों और विजयों का सम्मान करता है। भारत समेत चीन और क्यूबा जैसे विभिन्न देशों में इसे मनाया जाता है। मई दिवस का सांस्कृतिक और लोक कथाओं से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें मिठाई और फूलों से भरी टोकरियां बनाना, मेपोल के चारों ओर नाचना गाना और प्रियजनों को बसंत के फूल भेंट करना जैसी परंपराएं भी शामिल है। इस त्यौहार की जड़ें रोमन और गैलिक परंपराओं में है और यह मध्ययुगीन इंग्लैंड में एक लोकप्रिय मौसमी उत्सव था। ये रीति रिवाज समय के साथ कायम रहे हैं और दुनिया भर के लोगों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। मजदूर दिवस के पीछे लंबा संघर्ष, आंदोलन और कई लोगों की कुर्बानी छिपी है। यह दिन श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में श्रमिक अपने श्रम से समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करते हैं। इनके परिश्रम और योगदान को समर्पित होता है एक दिन जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यह लेबर डे, मई डे और वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यह दिन मनाया जाता है इस उम्मीद के साथ कि श्रमिकों को उनका हक और अधिकार मिल सके। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी श्रमिक बंधुओं को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं और उनके मंगल भविष्य की कामना भी करते हैं। तो श्रोताओं, श्रम संसार कार्यक्रम का आज का हमारा यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। तो लीजिए, सबसे पहले सुनवाते हैं आपको मदन रॉय के स्वर में एक निर्गुण गीत। संत कमाल के बोल हैं, भरत शर्मा ब्यास का संगीत है।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने सुना मेहंदी एल्बम से लिया गया ये पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए ये संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: संदेश के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम लोक माधुरी में, और अब लीजिए सुनिए ये अंतिम भोजपुरी एल्बम लोकगीत सत्येंद्र पांडे और संगीता के स्वर में।

घूमी आवा बाबा के बगीचावा। इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब रसधार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। तो सबसे पहले सुनवाते हैं आपको दीपक त्रिपाठी और अनन्या सिंह की आवाज़ में ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग जो कि पारंपरिक है।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

तोड़ के दिलवा। जी हाँ, ये एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे इसी एल्बम से, मधुलता मिश्रा के स्वर में। जाहिद अख्तर के बोल थे, मुकेश सिंह मनमौजी का संगीत था। और अब रसधार कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अक्षरा सिंह की आवाज़। जी हाँ, मस्ती भरी आवाज़ इनकी है और अजीत मंडल का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग है, जिसे संगीत दिया आर्य शर्मा ने है। तो आइए सुनते हैं यूपी बिहार लूटने इस एल्बम से अक्षरा सिंह की आवाज़ में ये एल्बम सॉन्ग।

यूपी बिहार लूटने। जी हाँ, इस एल्बम में अभी आपने सुना अक्षरा सिंह की ये आवाज़। और अब इसी के साथ हमारा आज का यह रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब के इस कलाम के साथ, स्वर मोहम्मद रफ़ी का और मौसिकार खयाम साहब।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और कलाम मिर्ज़ा गालिब का था। आइए अब सुनते हैं पायल देव की आवाज़ में ये औगार फिल्मी गीत। गीतकार कुणाल वर्मा हैं और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

ये स्वर था पायल दवे का और आप सुन रहे हैं इनकी गाई ये गैर फिल्मी रचना। कार्यक्रम में आप सुनिए अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम में आप सुनिए संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में अनिल पांडे का लिखा ओगार फिल्मी गीत। गायिका है शुभा मुदगल।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म हमराही की कव्वाली, आवाजें पन्ना डे, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की थी। इस कव्वाली को लिखा था शकील बानो भोपाली ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल। अभिजीत वगानी का संगीत है ये।

ये आवाज़ें अरमान मलिक और नीति मोहन की थी। आपने इनका गाया ये गैर फिल्मी गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में गुलजार साहब की ये रचना। संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

यह आवाज आशा भोंसले की थी और रचना गुलजार साहब की थी। लीजिए अब सुनिए मन्ना डे और साथियों की आवाजों में मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये भक्ति गीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश साबरी बंधुओं की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कव्वाली।

0: चलते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं शोभा गुर्टू की आवाज में संत मीराबाई का ये भजन।

शोभा गुरु की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना और रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मीर तकी मीर का कलाम फनकार मेहदी हसन।

0: मीर तकी मीर के इस कलाम के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

0: की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है। इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी की कुछ गीत रचनाएं लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन से, आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: के दांत ली करो तो मुझको जेल भेज दो, तुमने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, ट्रेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: mestra.
1: Mestra, mestra, mestra, mestra, mestra, mestra, mestra.
0: Mestra, mestra,
1: mestra. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
2: कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है जाल।

ये स्वर लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म जाल के लिए थे। कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है आज और कल।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है आज और कल। कृपया से दोबारा सुने। कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत कौर की आवाज में है, फिल्म का नाम है शगुन, गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार खयाम साहब।

जगजीत कौर की आवाज में ये था फिल्म शगुन का गीत। आइए सुनते हैं एन दत्ता का संगीत, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। फिल्म का नाम है दीदी।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना है।

0: कभी कभी।
1: ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था आंखें। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे रवि।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
4: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: खत लिख दे।

कार्यक्रम का अगला गीत जयदेव के संगीत निर्देशन में है। गीत साहिर लुधियानवी का, आवाजें आशा भोंसले और साथियों की। ये फिल्म है मुझे जीने दो।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है वक्त और स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी।

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म प्यासा से हमने लिया है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन सचिन देव बर्मन की है।

हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म प्यास हमें सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रचना एन दत्ता की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म काजल का गीत, गीत रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज रवि की।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और सुरीले सफर के इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं सुनने को ये कार्यक्रम। चलिए तो सुरीला सफर शुरू करते हैं और आप मेरे साथ हैं, यकीनन है ना? आपने वादा किया था मुझसे ये सफर में आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, तो वादा निभाइएगा, भूलना नहीं है वादा। तो देखिए, अब जब सफर है जिंदगी का तो इसमें सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जीवन की कटु सच्चाइयाँ भी हैं और जीवन की सच्चाई भी है, जीवन की सत्यता भी है। इस सभी को हमें याद रखना होता है अपनी जिंदगी के इस सुरीले सफर में। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम में यानी सफर में हमने एक प्रयोग भी किया है, अब वो प्रयोग आपको अच्छा भी लगेगा। प्रयोग ये है कि हमने जो गीत आज चुने हैं हमारी इबारत के मुताबिक, है ना, तो

सभी गीतों में एक खास आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वो आवाज किसकी है ये आपको हमें बताना होगा। तो चलिए आज की इबारत भी हम पढ़ देते हैं। जो हमारे दोस्त फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज इबारत क्या लिखी गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हमने लिखा है, दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ाओं में उलझी जिंदगी अक्सर खुद को भूल जाती है। ये मौसम, ये बहार, ये खूबसूरत शाम, ये तन्हाइयाँ सब बेकार लगने लगते हैं। ओरे मन, एक तरफ दुख दर्द है लेकिन दूसरी तरफ महबूब की पुकार भी तो है। महबूबा, देखो कोई तुम्हें पुकार रहा है, इस तरह तो उसे महसूस करो, रूह को सुकून मिलेगा यकीनन। एक बार, सिर्फ एक बार बस इस प्यार, इस प्रकृति को महसूस कर लो। बाहर भी है, प्यार भी है और दरिया की रवानगी भी। सुनो, प्यार और प्रकृति केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर का ही विस्तार है। जब हम बाहर प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को पहचान लो और हर पल को जी लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है। आइए शुरू करते हैं सुरीले सफर को कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे मदन मोहन। तो ये आवाज़ आपने पहचान ली होगी, किसकी आवाज़ है ये आपको बताना है। हमारे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हाँ मंदाकिनी जी, हम सुरीले सफ़र में हम भी आपके साथ हैं और स्वागत और नमस्कार करते हैं, और उन्होंने इस गीत को पहचान भी लिया था कि ये गीत कौन सा है। तो आप सभी इस सफ़र में हमारे साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि बदलते हुए मंजर का नाम है जिंदगी, और दुख के कितने ही झोंके क्यों न आए, जीवन एक राग में बज

ने वाला साज नहीं है। इसके साथ सभी रंग हैं, खुशी के, गम के, मिलन के, जुदाई के। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन एक मुकम्मल इंद्रधनुष है। महबूब की पुकार से मन में सतरंगी बाहर खेल उठती है। जीवन का एक सच ये भी है कि दुख और असफलता में व्यक्ति या तो मजबूत बनकर उभरता है या फिर उसका तन जीता रहता है और मन मर जाता है। आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है सखी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आज हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। थोड़ा कयास लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए। ये कार्यक्रम में यही तो मजा है। हमारे कई श्रोता थोड़े से नाराज हैं कि भाई कैसे पता लगाएं, अगर हम ये गाना लिखते हैं तो पता चलता है कि कुछ और निकल आया है तो क्या हो गया। ये एक मजाक होती है हार जीत तो, लेकिन कितना मजा आता है कि आपने उन गानों को चुना तो सही। हो सकता है आपकी जो च्वाइस है, आपकी जो सोच है, या जहाँ तक आपने सोचा शायद वो गीत हमने नहीं चुने हों, इसमें क्या हो गया। और अगर चुन भी लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपकी और हमारी पसंद एक हो जाती है। तो दिमाग की कसरत है ये, और जब आप दिमाग की कसरत करेंगे, जैसे गणित विषय पर हम करते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, तो कितना दिमागी कसरत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार की कसरत है इस कार्यक्रम में, और इस कसरत का आनंद लीजिए ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ा की गिरोहों में उलझी जिंदगी, कभी खुद को ही भूल जाती है, हर खुशी लगती है अजनबी, ये मौसम, ये बहार, ये शाम सुहानी, सब कुछ जैसे बेकार लगे, तन्हाई की चादर ओढ़े मन, अपने ही भीतर हार लगे। ओरे मन सुन जरा वो पुकार, कहीं कोई तेरा करे इंतजार, दर्द के उस पार भी देख जरा, कोई तुझसे ही करे प्यार, महबूबा की वो धीमी आहट हवा में घुलकर तुझे छूती है, रूह के सुने आंगन में आकर सुकून की ज्योति सी जलती है, एक बार तो महसूस कर ले इस प्यार, इस प्रकृति की सरगम को, बाहर भी है, दरिया भी है, धड़कन के इस आलम को, ये दुनिया बाहर जितनी सुंदर उतनी ही तेरे भीतर है, खुद से मिलना सीख ले मन, यही असली मुकद्दर है, हाँ सच है मन जीना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए, इस क्षणभंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए। और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले। बहुत सुंदर लिखा है आपने, भावों का ये सागर बहता है, सुरीला सफर के इस मंच पर हर दिल खुद से मिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जनाब आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं। और ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, इसमें गायक कलाकार कौन थे, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, ये आवाज़ें लता मंगेशकर और किन की थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान की बोल थी और मदन मोहन का संगीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर? आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफ़र का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उस अनमोल, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं, बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारा आपने पढ़ी थी उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूँ पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है, और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफ़र सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया है। शाम की तन्हाइयाँ ओरे माझी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नज़र नहीं आए चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार ज़रा फिर कह दो देखो मौसम क्या बाहर है आगे भी जाने ने तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एकाध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है। इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं दुख दर्द सागर नैना जिंदगी बाहर शाम तन्हाई मन महबूबा प्यार प्रकृति रूह सुकून दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुरीला सफ़र में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व दुख और प्रेम विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है। बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नज़ारे नहीं हैं बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं। मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरना जाता है मरता जाता है, ये शाश्वत सत्य को जीवन का सार है, पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाज़ों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो ख़ास आवाज़ किसकी थी, और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज़ किसकी है।

शैलेंद्र सिंह का शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज़ आपको बतानी ही है किन की है, और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की बहुत ही सुरीला गीत है, और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज़ से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिख दी है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शोर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ऐ दिल ज़रा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलती सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रहे हैं। तेरा हम सफ़र, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उस साहे को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक शांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल, जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयाँ, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति। बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही, वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से, और उसे निहारते तक नहीं हैं। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है, और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाज़ों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं। वो गीतकार की आवाज़ हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज़ हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज़ दी है, और शायद ये भी सच है कि वो एकमात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज़ दी है। वो कौन सा गीत है, हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफ़र में शामिल नहीं किया है, आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर और एक और आवाज़, फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ आवाज़ किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता हैं, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज़ किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एस डी बर्मन जी की आवाज़ में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साबित जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज़ में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज़ में माहिरी मैं कासे कहूँ पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सुरीला सफ़र कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मज़ा तो आ रहा है लेकिन 50%। देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मज़ा आने वाला है, जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पसंद हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफ़र में आपका स्वागत है, आज के सफ़र में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनकी मधुर आवाज़ के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ, इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा इसका कोई निर्देश नहीं है, किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली, किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही आपका द्वंद्व आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा, यही तो इस कार्यक्रम का मज़ा है ना, कि आपने क्या चुना, आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं, यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए, लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है ये, फिल्म का नाम है आजाद। और हाँ हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं।

जी हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज़ के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज़ है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज़ मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज़ थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज़ थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज़ है, हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज़ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई, इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी, बताइएगा ज़रूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज़ दी है।

जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरकें, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफ़र में हमारा साथ देते हैं वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ कभी कभी जो दुख और परेशानियाँ आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भैया आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाना गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना, वो गीत याद आया हमको, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ अपनी आवाज़ दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने

0: सुना फिल्म शोले का महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे।
1: झुके जो तेरे नैना,
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?
1: जो

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज थी और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफ़र, सुरीला सफ़र का ये गीत नज़र आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं, इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइए कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम, उसका जिक्र कीजिए।

का, ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं। आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत के किसी, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज़ है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पर रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी, शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं, स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से, कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफ़र शुरू होने वाला है, इंतज़ार कीजिए। अच्छा, आप नाराज़ तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश ख़त्म हो जाए, है ना, आप लिख पाएँ वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज़्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि ज़िंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी ही प्यारी प्यारी है, तन्हाइयाँ किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा। तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

जी हाँ, हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज़ में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुँच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज़ थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

जी, ये अवस्थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए।

उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 15 और जदयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पटना आवास पर हुई। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू कोटे से शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज शाम पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कैबिनेट विस्तार से पहले हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। IRCTC घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टल गया है। अदालत अब 22 मई को फैसला सुनाएगी। न्यायालय ने पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई अन्य आरोपी हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सुपौल निबंधन कार्यालय में पदस्थापित अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के कार्यालय और आवास में छापेमारी कर रही है। साथ ही उनके पटना और छपरा स्थित आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। अवर निबंधक पर आय से 65% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। हमारे संवाददाताओं

बताया कि वैशाली, सारण, सीवान, नालंदा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज समेत कई जिलों में आंधी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए, इससे आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। राज्य के 5 खिलाड़ियों सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारांश कुमार, सोनी कुमारी और साक्षी कुमारी का चयन भारतीय योगासन टीम में हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेंगे। सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यायबस्ती लोहा टोला के पास सड़क हादसे में पिकअप वैन पर सवार 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ये हादसा हुआ। नवादा जिले के रजौली टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क किनारे खड़ी हाईवा से एक तेज रफ्तार कार के टकरा जाने के चलते ये हादसा हुआ। अररिया जिले के चौपनी समेकित चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किए गए एक चीनी नागरिक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उसे पिछले दिनों बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की क़यादत वाली काबीना की तौसीह कल होगी। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरावगी ने बताया कि पटना के गांधी मैदान में होने वाली हल्फनामा तकरीब में वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर अमित शाह, जेपी नड्डा समेत काबीना के कई अरकान, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, जेडीयू सदर नीतीश कुमार और एनडीए के सरकर्दा रहनुमा शामिल होंगे। काबीना तौसीह में बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 अरकान असेंबली के वजीर ओहदे का हल्फ लेने का इम्कान है। वहीं एलजेपी रामविलास से 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक वजीर बनने की उम्मीद है। रियासत में काबीना तौसीह के सिलसिले में आज जेडीयू की एक अहम मीटिंग पार्टी के कौमी सदर नीतीश कुमार के पटना वाक़ रिहाइश पर हुई। मीटिंग में पार्टी के कारगुजार सदर संजय कुमार झा, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और मरकजी वजीर ललन सिंह समेत कई सरकर्दा रहनुमा मौजूद रहे। मौसूला इतला के मुताबिक मीटिंग में काबीना की तौसीह में जेडीयू जुमरे से शामिल होने वाले वज़रा के नामों को आखिरी शक्ल दी गई। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज शाम पटना में एक अहम मीटिंग होगी। काबीना तौसीह से कबल हो रही इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने के इम्कान हैं। IRCTC घपले से वाबस्ता जमाखोरी के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला मुलतवी कर दिया गया है। अदालत अब 22 मई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने पहले ही इल्ज़ाम तय करने का अमल मुकम्मल कर लिया था और अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस मामले में उस वक्त के वजीर रेल लालू प्रसाद, साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई दीगर मुलजमीन हैं। EOU यूनिट की टीम सुपौल रजिस्ट्री ऑफिस में मामूर सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार के ऑफिस और रिहाइश में छापामारी कर रही है। साथ ही उनकी पटना और छपरा रिहाइश पर भी छापामारी की जा रही है। हमारे नामा निगार के मुताबिक आमदनी से जायद इमलाक के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। सब रजिस्ट्रार पर आमदनी से 65% ज्यादा इमलाक जमा करने का इल्जाम है। मगरबी हवा के असर से राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। कई मकामात पर ज़ालाबारी भी हुई है। हमारे नामा निगारों ने बताया कि वैशाली, सारण, सिवान, नालंदा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मशरक़ी चंपारण और गोपालगंज समेत कई ज़िलों में तूफानी बारिश के सबब फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। आंधी के सबब कई जगहों पर दरख्त और बिजली के पोल भी उखड़ गए हैं। इससे आमदोरफ्त और बिजली सप्लाई निज़ाम ठप हो गया है। इधर महकमा मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि आज रियासत के

0: बेशतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होती रहेगी। रियासत के 5 खिलाड़ी सुधांशु शेखर, दिलीप कुमार, सारंश कुमार, सोनी कुमारी और साक्षी कुमारी का इंतखाब भारतीय योगासन टीम में हुआ है। बिहार रियासती खेल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल रविंद्रन शंकरन ने बताया कि मुंतखब खिलाड़ी 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में होने वाली पहली आलमी योगासन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। सारण जिले के भगवान बाजार थाना हलके के तहत न्याय बस्ती लोहा टोला के पास सड़क हादसे में पिकअप वैन पर सवार 2 औरत समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक तेज रफ्तार वैन के बेकाबू होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। नवादा जिले के रजौली टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में 6 लोग शदीद जख्मी हो गए। सड़क किनारे खड़ी हाईवा से एक तेज रफ्तार कार के टकरा जाने से यह हादसा पेश आया। अररिया जिले के जोगबनी समेकित चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किए गए एक चीनी शहरी को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। उसे गुज़िश्ता दिनों बगैर वैलिड दस्तावेजात के हिंदुस्तान में दाखिल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर तथा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 एवं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ग्रेड सी और डी

के लिए स्टोनोग्राफर के कुल 771 क्षमा करें 731 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की UPI और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
1: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
2: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम TVK के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियूर विधानसभा क्षेत्र से 3 के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे DMK गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी TVK के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में TVK को कांग्रेस के समर्थन पर DMK नेता और प्रवक्ता कनिमोई NVN सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये DMK पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त UDF गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
4: केरल में कांग्रेस विधायक दल

0: की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जाँच के अनुसार दोनों स्थानों पर IED का इस्तेमाल किया गया था।
2: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ISI कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड,

0: और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में डीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए पहला गीत सुने, मिस्टर जॉन फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार एन दत्ता।

ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था मिस्टर जॉन। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्त

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मदारी, फारूक केसर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी।

ये स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दो गुंडे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास का गीत सुनिए। कल्याण जी वीर जी शाह की संगीत रचना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म का नाम है धूल का फूल। रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत एन दत्ता का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाई बहन का गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, शब्दकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार एन दत्ता हैं।

इस युगल गान के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए,
1: हाँ
2: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
1: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
2: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग
1: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
2: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
2: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बिठाते हैं,
1: हा?
2: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ।
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से, चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना,
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं। पहले खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी, अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल, और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है, और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है। कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल जाते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है, लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसमें जब खाया, नहीं ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बसती जाती, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
0: हाँ, और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे, चले ठीक है सारी चीजें, अगर अपने को चखने का मन भी है तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं चखने के हिसाब से, फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है, तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
1: हाँ, लेकिन वो भरते बहुत है। और इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपने दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
0: हाँ, और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो, वो भी बड़ी बात है,
1: तो
0: क्योंकि खाना भी आमतौर पर शादियाँ शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेली भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते हो कि कुछ दूसरी चीज़ें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकती हैं।
1: लेकिन अब शादी में गए हैं तो कोई सोचता भी नहीं इस तरह से, बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीज़ें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सर नहीं पसंद आया, वो प्लेट आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली, तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित रहता है कि भाई क्वांटिटी में आप यूज़ करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट
0: नहीं,
1: होता है।
0: मेज़बानों की बात को आपके ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट्स गिनकर ही पैसे लेते हैं कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो एक तो एक ही प्लेट यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, उसी समय
1: ले सकते हैं,
0: और गर्म भी मिलेगा।
1: बिल्कुल, गर्म भी मिलेगा, और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुँचा देते

0: तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो
1: हाँ
0: खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, कहना
1: हाँ
0: चाहिए। और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखें, इस चीज़ को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की, एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस
1: जी
0: भोजन को करने से। और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को दान कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती हैं, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको खुद खाना लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप
0: बिल्कुल
1: सिर्फ उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके
0: बिल्कुल
1: बाद आप उन्हें फ़ोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि केटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, तो
0: हाँ
1: उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी
0: और
1: आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं।
1: हाँ
0: मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही लें जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और छोड़ देते
1: जी
0: हैं। और
1: टेस्ट करने जितना ही लीजिए,
0: हाँ
1: तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए।
0: वो आप खाइए, और जो हमारा जो मेन्यू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए, कि
1: हाँ
0: नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई सारी रोटियां रख दी, तो
1: हाँ
0: उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीज़ें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने
1: हाँ तो
0: से।
1: ये मेज़बानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीज़ें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने,
0: व्यंजन है
1: ऐसा
0: 36
1: मत
0: खाने,
1: कीजिए। आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ही है वैसे तो,
0: बिल्कुल
1: लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना है उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना,
0: वो
1: उन्हें
0: तो
1: 16
0: छत्तीस
1: में भी
0: में भी
1: निकालना
0: निकाले
1: है।
0: हैं।
1: जी
0: तो इसी तरह हम पानी की भी, हमने देखी बॉटल्स
1: हाँ
0: होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घुट पिया छोड़ दिया,
1: हाँ
0: या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए,
1: जी
0: जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं।
1: जी
0: तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीज़न में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीज़न में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रही हैं कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियाँ विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए। कह रही हैं एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं, जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़ें, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही लें। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं
0: बिल्कुल मिलते हैं,
1: ना।
0: सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा हुआ है।
1: हाँ
0: और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा, कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था, खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज़्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के, ज़मीन में बैठ के खाते
1: जी
0: थे, उसमें
1: जो
0: दोनों
1: परोसा जाता
0: परोसा
1: था,
0: जाता था, वो पूछते थे कि और लेंगे और लेंगे, तो इस तरह
1: हाँ
0: से खाना थोड़ा बच जाता था।
1: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता है, अरे नहीं खाएंगे, खाइए खाइए,
0: खाइए
1: दो तीन रोटियां दे दी जाती थी
0: खाइए।
1: जो
0: तो
1: कि बच जाती थी, पर ठीक
0: हाँ
1: है, सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं
0: हाँ
1: करते थे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट ना खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि 2-3 दिन भूखे रहना चाहिए
0: लेकिन ऐसा
1: शादी के लिए।
0: होता नहीं
1: हाँ
0: है।
1: इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई, तो
0: उन्होंने
1: कह रहे
0: अपने हिसाब से कहा है, लेकिन लोग
1: हाँ
0: बड़ा इंतजार करते हैं।
1: भूख के
0: नहीं
1: कारण जरूरत से ज्यादा ना खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें, प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं,
0: अरे बहुत से
1: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है
0: लोगों
1: मेरा इस कमेंट के साथ,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे
0: नहीं नहीं मना तो कर नहीं भी
1: हैं।
0: सकते क्योंकि आजकल
1: जी
0: हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर 2-3

0: कि आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको
1: देखिए
0: खाते हैं,
1: मंजरी
0: स्वाद
1: जी,
0: लेते
1: इतनी
0: हैं।
1: ज्यादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता
0: तो
1: दिया।
0: फिलहाल एक गीत
1: हालांकि
0: सुना
1: उन्होंने
0: देते
1: कहा है कि
0: हैं, है ना। हाँ
1: उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम या जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो
0: परेशानी
1: सकती
0: हो
1: हैं।
0: सकती
1: तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए,
0: फिर
1: और
0: खाएं।
1: उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें
0: बिल्कुल
1: कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन
0: फिलहाल
1: बस
0: तो
1: गाना सुनते रहिए।
0: गाना सुनते रहिए।

0: तो इसी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मतलब एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
0: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट लंच सभी सुविधाएं पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवें। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टॉल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
0: रस्में
1: होती है उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए,
0: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी साड़ियों।
1: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
0: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद
1: भी हो गई है
0: शिकायत, हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसी थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रुकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मिथेन गैस पैदा करता है।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में लें, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो

0: भोजन डस्टबिन में जाता है जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे ज़रूर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं। पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि ये आपका क्या जा रहा है, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज़्यादा ले लेते थे, फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग सुन लें गीत।
1: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जिसे चिकनकारी कहा जाता है। और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियाँ जो होती है बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन मंजरी जी दो बातें देखिए ऐसी आई हैं कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे नजर नहीं हट रही हमारी,
0: क्योंकि तुम्हारा इशारा पढ़ लो।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तली भुनी चीजों से दूर रहे, ठीक है, खाली मिठाई ही वो खा रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और ये कहा कि
0: नेहा, हम साथियों को ये तो बता दे कि नेहा इस कमेंट को देख के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का कमेंट है।
1: हाँ, ये बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े हुए साथी जैसा लग रहे हैं। और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ किया, हम तो कह रहे हैं देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, अपने रिस्क पर खाइए, ऐसा कह सकते हैं,
0: छोड़िए कुछ भी जी। तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं।
1: हाँ, चिकन की साड़ियों पर।
0: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ लघु उद्योग है जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज़्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुर्री, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनपे कढ़ाई होती है। और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है।
1: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएँ हैं और ज़्यादातर महिलाएँ लखनऊ में गोमती नदी किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो हैं थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है, क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, और यहाँ कई बार हमने खुद भी देखा है वहाँ पर कि घर घर में कढ़ाइयाँ होती, महिलाएं, बच्ची, लड़की बैठी सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है। और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
1: बिल्कुल, और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आँखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत, जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं।
0: और लगभग 40 प्रकार के टांके

0: और जाले तो होते ही हैं, जैसे मुरी, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला, बंगला जाली, मुद्रा जारी, जाजी, सिधौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि, नहीं बहुत सारी हैं। सबसे मुश्किल और कीमती टाँका है नुकीली मुरी। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टाँके लगाए जाते हैं, जिससे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मंचा है बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है।
1: जी
0: इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
1: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से इसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है। अलग अलग तरह के मिलते हैं आजकल, मशीनों वाला काम भी मिल रहा है,
0: हाँ,
1: लेकिन
0: लेकिन उसकी
1: हाँ
0: चिकनकारी की अलग पहचान
1: जी
0: होती है
1: आप पहचान
0: और
1: सकते हैं।
0: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे
1: हाँ
0: जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ भी हैं, और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी, इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफ़ा कवर, इन सब पर भी ये वर्क मिलता है, तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल
1: जी
0: मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छी कढ़ाई है, तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा, है ना?
1: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: तरह की साड़ियाँ क्यों लेती है हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है,
1: बिल्कुल बनता है। हाँ? तो चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना हाँ, के खा लेना,
0: कुछ तो गुस्सा कम हो,
1: कुछ तो कम होगा तुम्हारा, ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं, खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
0: नहीं, हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए अच्छा, हम खाएंगे आम की स्मूदी,
1: बनाओ
0: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे।
1: चलो ठीक है।
0: तो एक आम पका हुआ लेना है इसके लिए काट कर, एक कप ठंडा दूध, दो चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
1: अच्छा, नहीं तुम आज अकेले खाने हाँ। तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तो हम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही।
0: हाँ,
1: इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, एक कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटें, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें, और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, और नेहा को देख दिखा दिखा के खाएं।
0: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो, दो कप दूध, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, तीन चार चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए, जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियाँ पड़ जाती हैं, तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए, और ठंडा होने पर इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए, स्वाद दोगुना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी,
1: और फिलहाल सुनने वाले हैं
0: गाना।

0: था।
1: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
2: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा, कि पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचाने, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य, आप परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
1: हाँ।
2: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बना रहता है।
1: जी। और हमारे साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहाँ विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। उन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे लिए।
2: बहुत अच्छी सी बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, एक शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
1: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज़्यादा दिक्कत के, वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहाँ भी अगर आपके पास समान रहते हैं सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
2: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज़ में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
1: और हमारी और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहाँ विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहाँ शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
2: तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो हमारे साथ ही लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और अच्छा। कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ देना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे, तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है। जनरेशन गैप की समस्या

0: परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठा कर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों को ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करना।
1: आइए।

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय वमय रह नहीं गया है
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे उनके रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
2: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहाँ रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज़ के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीज़ें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ। मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हाँ, मैंने बहुत काम किया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? आप
2: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी।
1: अच्छा।
2: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचें, तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने। और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी 2-3 रेडियो सीरीज की थी
1: जी,
2: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे, और रेडियो पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता था। तो वो मैंने एक निर्मला किया था, जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था, कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था। चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफ़ी महत्वपूर्ण था, और वो सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
1: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कैसे नाटकों की दुनिया में आए? कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
2: जी, वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16-17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं। उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई।
1: अच्छा,
2: छोड़ के
1: जी।
2: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे, तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी

0: है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या, मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है पर कर लूंगी अगर करवाना है तो। बोले ठीक है आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में। उन्होंने कहा आ जाओ। उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक एक
1: यही
0: नया जीवन,
1: जीवन मिल गया।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी। पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी।
0: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे वो, जो उसमें डायरेक्टर थे और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए
1: जी जी
0: कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे और वो मेरे हीरो थे।
1: जी, तो अब तक आपने कितने नाटक कर लिए होंगे
0: स्टेज पे? तो मैंने मेरे ख्याल से 25-30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8-10 साल। उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
1: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था है वदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार बीवी कारंत साहब के निर्देशन में,
0: जी,
1: एक
0: जी,
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
0: जी इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था है वतन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई रंगमंडल में, तो वहाँ पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज़्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की। नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था। इससे पहले उन्होंने NSD में ये किया था और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही। और वो कैरेक्टर उसमें जो है बदन में जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का, तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था। और उसके लिए जो उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज़ पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहाँ से लेके एक एक चीज़ पे काम किया। और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक अब तक मेरे काम आ रही है
1: जी।
0: जो जो बताया उससे जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहाँ भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
1: तो इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
0: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया, दोनों के दोनों दोनों चले गए, दोनों चले गए, मरने से पहले मुझे तो याद कर लेते, मेरा क्या होगा। माँ माँ माँ दुर्गे दुर्गे, अब तू ही बता मेरा कौन है, कौन है, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अब कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूँ। इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी देखिए,
1: उसके अंदर क्या चल रहा है, हाँ।
0: वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल ये क्या है, ओफो हमें क्यों सता रहे हो,

0: जाओ यहां से। देवदत्त मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। हाँ, सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है। याद रखो, चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन ले।
0: जी जरूर। आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
1: अच्छा जी।
0: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं। तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी, जी।
0: और जिस तरह से वो वेस्टर्न, इंडियन सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे आ रहे।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थे एनएसडीएन आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा. एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको.
0: बिल्कुल.
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल

0: मैंने किया था, जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था। हमारा एक ग्रुप था कुटुंब,
1: अच्छा,
0: जिसमें अन्नू कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि के मुंह वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय।
1: बिल्कुल,
0: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था, आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो। तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका, और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था।
1: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
0: जी,
1: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
0: जी,
1: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
0: जी, जी।
1: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है, संवाद याद रखना, हाँ। बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है, खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
0: ये तो साधना है, मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग। ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना। लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
1: बहुत मुश्किल,
0: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है। ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है, शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार, लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं चीजें, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: और इस सब को कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं
1: पाएगा।
0: बहुत
1: मुश्किल होता है, कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है कलाकार को
0: कई बार नहीं बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे, कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई, एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को, मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है, भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ वहाँ की, तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूँ, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया, बुरा किया, वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूँ। तो वो मुझे बोले, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर क्यों लिया? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं, लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो, मैं थक गया हूं तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर, क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहां प्यार में डूबी हो, वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं? जो इतना डांटा गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।

0: बुनियाद धारावाहिक में काम आए।
1: हाँ,
0: जी जी जी
1: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना, अपना जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था। मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, ये चोटी घुमाई थी, तो बोलने लगे वेरी गुड, वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
0: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता
1: काम
0: ही है,
1: आता जो वो सीखता
0: सीखता
1: है।
0: है
1: महान
0: इसीलिए।
1: डायरेक्टरों
0: हाँ
1: से उनके साथ काम करना,
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए एक
0: बड़ी बात।
1: अचीवमेंट है।
0: मुझे बताइए
1: बिल्कुल,
0: प्रभा जी, कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है
1: जी
0: ना,
1: जी जी
0: वैसे के वैसे हो जाए,
1: बिल्कुल
0: समाहित हो जाए। तो
1: जी।
0: आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
1: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मैं
0: उसे
1: तुरंत
0: बाहर।
1: प्रभा हो जाती हूँ।
0: जी।
1: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीरियंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने
0: नहीं
1: नहीं
0: होने
1: दिया।
0: दिया,
1: मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
0: बिल्कुल।
1: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं। मतलब मुझे कहते थे, ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था,
0: जी।
1: संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहाँ गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी, और उसमें वो जो लेडी होती है, उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है। मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब निकालोगे? क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? हाँ, इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूँ टूट के, कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे, आर यू ओके? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है।

0: गोल्डन आय नाम था उस फिल्म का,
1: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज
0: जी जी जी जी मेरी आवाज है
1: जी।
0: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
1: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
0: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही, तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
1: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
0: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
1: अच्छा,
0: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, BBC है, इसकी वॉइस ओवर हैं, विज्ञापन हैं, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से कम।
1: जी जी,
0: तो सिर्फ आवाज़ कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
1: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
0: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनानी होती, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो, अरे क्या बताओ, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मैं नहीं आ सकता, समझो समझो समझो करो समझो करो, कैसे छोड़ दूंगा।
1: हाँ, बात को
0: ऐसे आवाज़ में।
1: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: तुझे जीवन की डोर से बांध
1: दिया।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है। अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माईसोन और हानताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात

0: सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। 5:30 समय होगा महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का। आज के इस कार्यक्रम में बहनों से बातें होंगी गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के उपाय, हिंदी फिल्म संगीत और पाक कला के अंतर्गत घर में बनाए जाने वाले पौष्टिक पेय और चलते चलते पर्याप्त पानी पीने का महत्व है।

हमारे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण समय होगा शाम 6 बजे और 6:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

सांध्यकालीन सूचना का कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:15 पर और 7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। 7:50 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रचारित समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत।

रात्रि 10 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग, और 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 10:55 पर आप जानेंगे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रात्रि के 11 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और सभा का समापन होगा हमेशा की ही तरह रात्रि के 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम का पहला गीत सचित टंडन की आवाज़ में एल्बम गजानन से। शबीर अहमद के बोल हैं और संगीतकार हैं अंकिता राज।

सचेत टंडन की आवाज़ में अभी आपने सुना गजानन एल्बम का ये गीत, और अब लीजिए सुनिए अदनान अहमद की आवाज़ में एल्बम माँ का आशीर्वाद एल्बम का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए सुरेश वाडेकर की आवाज में गायत्री मंत्रा।

सुषमा चोपड़ा के गाए इसी गीत के साथ ही वंदन कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए महिला भवनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन।

बहनों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी मंजू बाला और आशा करती हूं बहनों कि आप सब स्वस्थ होंगी, खुश होंगी अपने घर परिवार के साथ। वैसे बहनों, स्वस्थ रहना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना तो हर मौसम के लिए ज़रूरी है, पर अभी जो गर्मी है इस मौसम में हमें थोड़ा ज़्यादा ही सजग रहना पड़ता है, क्योंकि गर्मी अपने साथ साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती है, जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन, थकान और त्वचा संबंधी कई तरह की परेशानियां इस मौसम में देखने को मिलती हैं। इसलिए इस तपती गर्मी में खुद को तथा अपने परिवार को स्वस्थ और ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो आइए बातें करते हैं कि इस गर्मी में अपने और अपने परिवार का ख्याल कैसे रखें। तो बहनों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उपाय जो है वह पानी का भरपूर सेवन। गर्मी में हमारे शरीर में पसीने के रूप में पानी निकलता रहता है, इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। आप नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थ भी ले सकती हैं, वह भी पानी का विकल्प है। इसके साथ ही बहनों, धूप से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। अभी इस चिलचिलाती धूप में जब तक बहुत ज़रूरी न हो, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच तेज़

धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी पड़ गया, तो छाता, टोपी या गमछे का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ धूप का चश्मा लेकर ही हमें बाहर जाना चाहिए। और अब बात करते हैं खान पान की। तो बहनों, गर्मी में हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। हरी सब्जियां, फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन करना चाहिए। तला भुना और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए। इतना हो सके कम खाना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर का खाना ही खाएं। बाहर खुले में मिल रही चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा ताज़ा ही खाएं। खाना बनाकर रख देने से ये आज के समय में, आज की गर्मी के समय में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, इसलिए इन्हें देर तक ना रखें और खाना को हमेशा ढक कर रखें। और हाँ बहनों, स्वच्छता का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं। विशेषकर अपने बच्चों को यह हिदायत ज़रूर दें कि वे जब भी घर से बाहर खेलने जाएं या खेल कर आएँ तो अपने हाथ पांव ज़रूर धोएं, तभी उन्हें कुछ खाने को दें। इसके अलावा ढीले ढाले और हल्के सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को ठंडक मिले। कोशिश करें कि लगातार काम न करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में लगातार काम करने से थकान हो जाती है। इसलिए काम के बीच बीच में थोड़ी देर तक आराम करना भी ज़रूरी है ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। तो बहनों, ये कुछ बातें थीं जिन्हें अपनाकर आप गर्मी के मौसम में भी खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और खुश रख सकती हैं। और अब वक्त है गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बहनों, पानी हमारे जीवन का आधार है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। मानव शरीर का यानी हमारे शरीर का लगभग 60-70 हिस्सा पानी से बना होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है, जिससे सिर दर्द, थकान, चक्कर और कमज़ोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर के कई कार्य सही ढंग से चलते हैं, जैसे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, हमारी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, पानी हमें ताजगी और ऊर्जा भी देता है, विशेषकर गर्मियों में। जब पसीना ज़्यादा निकलता है तब पानी की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। तो अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि हमें रोज़ कितना पानी पीना चाहिए। बहनों, विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। हालांकि यह मात्रा पानी की यह मात्रा जो है उम्र, मौसम और शारीरिक गतिविधि के अनुसार बदल सकती है। जैसे छोटे बच्चे 8-10 गिलास पानी नहीं पी सकते, बुज़ुर्ग 8-10 गिलास पानी नहीं पी सकते। यह जो मात्रा है वह एक व्यस्त

के लिए है, या इसलिए बहनों कुछ बातों का हमें नियम बनाना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही एक गिलास पानी ज़रूर पिए। अभी गर्मी का मौसम है तो जब भी बाहर जाएं पानी पी कर ही जाएं, इसे लू भी नहीं लगती। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी बचें, पानी हमेशा साफ़ और स्वच्छ ही पिएं। याद रखें, पानी में छिपा है हमारी सेहत का राज, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इस गर्मी के मौसम में पानी से दोस्ती करें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है पीना।

इसलिए बेहतर है कि हम घर पर ही आसान और पौष्टिक पेय बनाकर पिएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान और लोकप्रिय पेय पदार्थ छाछ से। छाछ बनाना भी बिल्कुल आसान है और इसे सभी पसंद भी करते हैं। दही में पानी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें, उसमें थोड़ा नमक, भुना जीरा और पुदीना डालें। यह पाचन में मदद करता है और शरीर को भी ठंडक देता है। और अब बात करते हैं नींबू पानी की, तो इससे अच्छा तो विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। बनाने में झटपट बनने वाला पेय है ये। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर है और इसके फायदे तो सभी जानते हैं। एक गिलास पानी में नींबू का रस, चीनी या शहद और थोड़ा सा काला नमक मिलाएं, बस तैयार है नींबू पानी। आम पन्ना, यह गर्मियों के लिए रामबाण है। यह लू से बचाव करता है, साथ ही साथ शरीर को ठंडा भी रखता है। बनाना भी बिल्कुल आसान है। कच्चे आम मार्केट में खूब मिल रहे हैं अभी। कच्चे आम को उबाल लीजिए, उसका गुदा निकाल लीजिए और उसमें पानी, चीनी, काला नमक और जीरा मिलाकर तैयार है पन्ना। जिन्हें दूध का शरबत पसंद है वह भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि दूध शरीर को ऊर्जा देता है। इसलिए आज इसे घर में ज़रूर बनाएं। दूध ठंडा होना चाहिए, यानी फ्रिज में रखा होना चाहिए। दूध में गुलाब शरबत या बादाम, पिस्ता पीसकर मिला लें और अपनी इच्छा अनुसार चीनी या शहद मिलाकर आपका दूध का पेय यानी शरबत तैयार है। बहनों, गर्मियों में खीरा शरीर को डिटॉक्स करता है, साथ ही ठंडक और ताजगी भी देता है। खीरा पुदीना ड्रिंक भी एक पौष्टिक पेय पदार्थ है। खीरा पुदीना और नींबू को मिक्सी में पीस लें और उसमें ठंडा पानी मिलाएं और छान लें, बस शरबत तैयार। और अब बात करते हैं बेल का शरबत, जो बहुत ही अच्छा पौष्टिक पेय पदार्थ है। एक पका हुआ बेल मध्यम साइज़ का लें, उसका गुदा निकाल लें। अब उस गुदे को छलनी से छान लें, क्योंकि उसका बीज निकल जाए। उस गुदे में काला नमक, भुना जीरा और पुदीना मिलाकर पानी, ठंडा पानी मिलाकर शरबत बना लें। उसमें ऊपर से चीनी डालने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बेल में नेचुरल मिठास होती है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो चीनी मिला भी सकती हैं। और अब बात करते हैं सत्तू का शरबत। यह पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे पीने से पाचन भी दुरुस्त रहता है और ठंडक भी मिलती है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में 4 छोटे चम्मच सत्तू लीजिए। उसमें काला नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाइए। आप इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज और हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर डाल सकती हैं। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी पेय पदार्थ है। तो बहनों, इन गर्मियों में हेल्दी पेय पदार्थ का सेवन जरूर करें और स्वस्थ रहें। और अब चलते चलते आइए पुनः सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बहनों, इस मौसम में यानी गर्मी में खाने से ज़्यादा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है ना? और यह हमारे लिए ज़रूरी भी तो है, क्योंकि इस समय शरीर को ठंडा, ताज़ा और स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी होता है। बाहर मिलने वाले पेय पदार्थ कई बार हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।

बहनों, छोड़कर जाने का तो मन मेरा भी नहीं करता, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि स्टूडियो की सुई हमें इशारा कर रही है कि अब कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो चला है। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि प्रस्तुति कार्यक्रम की प्रस्तुति अमित कुमार की थी, और अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनेला सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा। देखें श्रोता सभी, हमनी के संस्कृति में ही संस्कार भरल बा। संस्कृति और संस्कार हमनी के कभी ना भुलाए के चाहिए, अपन संस्कृति संस्कार सहेज के रखे के चाहिए। काहे से कि संस्कारवान व्यक्ति हर जगह अपन प्रतिभा और लगन से प्रसिद्धि प्राप्त कर सकेल। हमनी के संस्कारवान बने के चाहिए। श्रोता सभी, लाख विपत्ति आवे चाहे जो भी होके, अपन हमनी के कर्तव्य ना भुलाए के चाहिए। कहीं कहीं लोग अधिकार के बात करेला कि हमारी अधिकार बा, हम इसे करब, तो कर्तव्य भी तो कुछ बा। आपके अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ल बा, चाहे देश के साथ होके, चाहे परिवार के साथ होके, चाहे समाज के साथ होके, चाहे रउआ अपना माने व्यक्तिगत होके, हर जगह राउर अपने को कर्तव्य बा। कर्तव्य कभी ना भूले के चाहिए। कर्तव्य यदि रउआ याद रखब तो अधिकार अपने आप मिल जाए, मांगहू के ना पड़ी। तो इसे देखी श्रोता से कहल जाला कहीं कहीं कि मालिक कोई के बनावल ना जाला, ओकर मालिक के गुण आ जाला कि वो मालिक बन जाला। कहीं भी देखी घर के एगो सदस्य मालिक बनता तो एक दो कट्ठा बिचाए लगता, आ एगो सदस्य मालिक बनता तो दो चार कट्ठा किनाए लगता। यानी ओकरा में गुण बा, ओ तरह से ओकर भावना बा, एक माने साथ लेकर सबके साथ सबके विकास करी। आ ऐसन भावना रखल जाओ तो हमनी के एकदम माने कहीं दिक्कत ना होई। आ श्रद्धा बहुत जरूरी बा। आई आज के कार्यक्रम के थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लिया जाओ। अभी आज चर्चा के तहत हमनी के सुनल जाए, परिवार में अनुशासन बा बहुत जरूरी। आ एगो लोकगीत के आनंद लिया जाए, कलाकार रहब आरती माला। आ एक बाद एगो वार्ता सुनल जाए, विषय रही भोजपुरी से क्यों दूर हो रहा बा नया पीढ़ी। वार्ताकार आज के रह समरेश कुमार सिन्हा। एक जानकारी के तहत जानल जाए, घरों पर सोलर प्लेट लगाई और बिजली बचाई। आ फिर मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जाए, बीच में कहीं विज्ञापन भी हमनी के सुनल जाए। तो आई आज के हमनी के परिवार में अनुशासन बा बहुत जरूरी, एकरा बारे में तनी जानल जाओ। अभी हमनी के यही के बारे में सोचत रही जा कि अपन कर्तव्य और अधिकार के बात हर जगह सोचे के चाहिए कि हमारा अधिकार बात तो कुछ हमारा कर्तव्य भी बा। ऐसे ही देखी जौना परिवार में अनुशासन बा, ओजा बच्चन के सही गलत के अंतर सिखावे के ना पड़ेला, आत्मनियंत्रण विकसित करे के ना पड़ेला, ओकरा के जिम्मेदारी देवे के ना पड़ेला। अनुशासन बा तो जिम्मेदार बच्चा बा, आ जिम्मेदारी समझेला। जैसे मान ली कि ओकरा के क्लास में या पढ़ता तक माने विद्यालय में कोनो टास्क मिलल, तो आवते आवते अपन जिम्मेवारी समझ के टास्क बनावे लगल, होमवर्क पूरा करे लगल, तो समझी कि वो जिम्मेवार बा। ओकरा मिशन संस्कार बा कि भाई उ अगर टास्क ना बनाए तो बड़ा ओकर खातिर बेकार बा। अनुशासनहीनता के पालन करता तो अनुशासन घर में सुख शांति आ सुव्यवस्थित माहौल और सदस्यतन के बीच आपसी सम्मान बनावे खातिर बहुत जरूरी बा। एकरा में मदद भी मिलला। अनुशासित परिवार समय पर काम पूरा करेलन और जीवन के लक्ष्य के पावे में सफलता हासिल करेलन। अनुशासन ही बच्चन के सर्वांगीण विकास कर सकत बा। अनुशासन बच्चा के सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार और भावनात्मक रूप से परिपक्व होके के सिखावेला। इससे हमनी के परिवार में अनुशासन रखे के चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी बा। सुखद और स्वस्थ माहौल भी अनुशासन ही बनावेला। नियमन के पालन से हर घर में कलह कम होला और आपसी प्रेम बढ़ेला। तालमेल के साथ साथ भाईचारा के भी भावना जागेला, श्रद्धा जागेला, एक दूसरा के प्रति प्रेम जागेला। ऐसे अनुशासन हमनी खातिर बहुत जरूरी बा। परिवार में अनुशासन होई तब परिवार के विकास होई। अनुशासन से परिवार के सभी सदस्य के आपसी कर्तव्य के भी पता चलेला, जना से लक्ष्य पर ध्यान तक केंद्रित करबे करलन, साथे साथ एक दूसरा के सम्मान भी करेलन। अनुशासन से ही सही और गलत के समझ विकसित होला, जना से बच्चा के अपन कार्य के परिणाम के समझ में मदद मिलेला। सुरक्षित वातावरण जब नियम स्पष्ट होला तो बच्चा खुद के अधिक सुरक्षित और समर्थ महसूस

करेलन जौना से उनकर मानसिक विकास बेहतर होला। सही में कहल जाओ तो अनुशासन परिवार के आधारशिला हो जौन ओकरा के मजबूती और सफलता के दिशा में ले जाला। ऐसे हमनी के श्रोता सभी अनुशासन में रहे के चाहिए, अनुशासन के पाठ एक दूसरा के पढ़ावे के भी चाहिए। यदि हमनी खुद अनुशासित रह जाए तो बच्चा भी अनुशासित रहियन, परिवार में समाज में ऐसन कोनो वाक्य ऐसन कोनो व्यवहार न करी जोना से अश्लीलता जाहिर होके बच्चन पर बुरा प्रभाव पड़ेला। तो इस तरह से परिवार में अनुशासन बनाई या परिवार के विकास करी। आई एगो लोकगीत के आनंद ले जा आज के कलाकार बनी आरती माला जी।

0: दायक रहल। सुन के तम आज एकदम हरियर हो गई हुई आ रौरो सब एकदम हरियर हो गई हुई हमनी के तो हरियर हुई गए। देखिए श्रोता सब गीत संगीत के आनंद तो लेबही के चाहिए। एक गीत खातिर हमनी के आरती माला जी के बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया जाओ। आई अब हमनी के आगे कुछ चर्चा कर से पहले जानल जाओ कि भोजपुरी से कहें दूर हो रहा बा नया पीढ़ी। नया पीढ़ी जौन बा बहुत जगह से कट रहा बा। भोजपुरी के कुछ ऐसन माने व्यवहार हो गई बा, भोजपुरी के ऐसा अश्लीलता हो गई बा, एक शब्द के प्रयोग कई बार कई जगह अनेक अर्थ दे रहा बा, जौना के चलते नयका पीढ़ी असमंजस में पड़ जाता, जौना के चलते धीरे धीरे वो भोजपुरी के शब्द के भूल रहा बा, भोजपुरी से दूर कट रहा बा। तो एक तरह से देखी हमनी के समाज में चाहे वो कलाकार होकस चाहे नायक होकस चाहे जे भी होके समाज के आगे बढ़ावे खातिर भोजपुरिया के कोई भी होके ऐसा कोनो गाना या ऐसा कोनो वीडियो ऐसा कोनो माने एक तरह से कहीं कि फिल्म माने न करस जौना से कि नयका पीढ़ी दूर होके एकरा पर थोड़ा ध्यान जरूर देवे के चाहिए। तबे जाके हमनी के नयका पीढ़ी भोजपुरी से जुड़ल रही। भोजपुरी में तो एक से एक इतना अच्छा शब्द बा जौना के कि माने और कहीं मिल ना सके। रौरा अभी जौन शब्द बा ई भोजपुरी में बा और कहीं नहीं के कहीं माने रौरा जी माने ई सब भोजपुरी के थी। भोजपुरी बहुत मीठा शब्द हो जे बोली उहे जानी आ जे बोली ओकरा में ऐसा माने मीठा भोजपुरी जैसा कोनो भाषा नहीं है। तो आई भोजपुरी से कहें दूर हो रहा नया पीढ़ी एकरा बारे में एक विषय पर एगो वार्ता सुनल जी। आज के वार्ताकार रहब समरेश कुमार सिन्हा जी। तो यहाँ से जानल जाओ भोजपुरी में कहें दूर हो रहा भोजपुरी से नया पीढ़ी।
1: भोजपुरी से दूर होते हम यह सुनने में कुछ अजीब सा लगता है ना, लेकिन यह एक कड़वा सच है और जिस पर आज हमें चिंता और चिंतन दोनों करने की ज़रूरत है। यह बड़े ही दुख की बात है कि आज जैसे जैसे हमारे समाज का दायरा बढ़ता जा रहा है वहीं हमारी सोच और मानसिकता उतनी ही संकुचित होती जा रही है। आज की पीढ़ी अपनी इस मातृभाषा से कटती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण खुद अपने ही घर में भोजपुरी का प्रयोग नहीं होना है। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं जब छोटा था तब मेरे मोहल्ले में हर घर में लोग बातचीत भोजपुरी में ही करते थे, लेकिन आज हालात ठीक इसके विपरीत हैं। हर घर में माता पिता अपने बच्चों से हिंदी में ही बातें करते हैं, पति पत्नी भी घर में आपस में हिंदी में ही बातें करते हैं, तब भला उनके बच्चे कैसे भोजपुरी में बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी में बात करने से वे छोटे हो जाएंगे। सामाजिक समारोह या पारिवारिक उत्सव हर जगह दूर दूर तक भोजपुरी कहीं नज़र नहीं आती है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हम जिस भाषा का इतना तिरस्कार कर रहे हों वह सात समंदर पार मॉरिशस सूरीनाम फिजी ट्रिनिडाद टोबैगो सहित कई अन्य देशों में सफलता के परचम लहरा रही है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष इसी मिट्टी से गए हैं, वहाँ कई बड़े बड़े उद्योगपति भी इसी मिट्टी के हैं। मॉरिशस के सर से उसागर राम गुलाम हो या फिजी के महेंद्र चौधरी या फिर त्रिनिदाद टोबैगो के वासुदेव पांडे सभी भोजपुरी भाषी ही हैं। इनकी जड़ें भोजपुर के ग्रामांचलों में ही हैं। वहाँ वे अपने को धन्य मानते हैं कि वे भोजपुरी भाषी हैं। इतना ही नहीं वे गर्व से अपनी टूटी फूटी जुबान से ही सही भोजपुरी बोलकर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज तक न तो हमारी लिपि ही विकसित हो पाई और न ही संविधान की 8वीं अनुसूची में हमें जगह ही मिली। कारण स्पष्ट है, हमने पूरे मन से इसके लिए मेहनत नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जुबानी औपचारिकता भरपूरी की। यही कारण है कि आज हम अपनी ही जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हमें इसके लिए बेसिक स्तर पर कार्य करने होंगे। मसलन प्राथमिक स्तर से ही इसकी ज़रूरतों को बच्चों को समझाना पड़ेगा। हो सके तो एक भाषा के रूप में निम्न वर्गों से ही विद्यालयों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाए, जिससे आगे चलकर वे बच्चे बेहिचक कहीं भी बिना किसी हीन भावना के इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर सके। हमें पारिवारिक या सामाजिक समारोहों में भी इसका प्रयोग शुरू करना होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद इस भाषा को भूल जाएगी। आज जब हम यह देखते हैं कि तमिल तेलुगु मराठी कन्नड़ मलयालम उड़िया गुजराती सरी की कई क्षेत्रीय भाषाएं जिस मुकाम पर हैं तो उनके तुलना में हम भोजपुरी को कहीं नहीं पाते, जबकि भोजपुरी का इतिहास अति समृद्ध

और भरा पूरा रहा है। स्वर्गीय हवलदार त्रिपाठी सहृदय ने भी इस भाषा के विकास के लिए काफ़ी काम किया। पटना में भोजपुरी अकादमी का गठन किया तथा उसके माध्यम से भाषा एवं साहित्य के उत्थान हेतु बहुत काम किया। आरा के ही स्वर्गीय मनमोहिनी कांत ने भी भोजपुरी में कई पुस्तकें लिखीं। बुढ़ऊ की चिंता उनकी बहुत ही लोकप्रिय रचना थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कवि सम्मेलनों में उनकी इस रचना के पाठ होने पर लोग वंश मोर की आवाज़ लगाते थे। तो जब हमारी विरासत इतनी समृद्ध है तो हमारा वर्तमान भला कैसे पीछे रह सकता है। जरूरत इस बात की है कि हमें मन से इसके लिए काम करना पड़ेगा। पूरे भारतवर्ष में जितने जिलों में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है उतना किसी अन्य भाषा का नहीं। भोजपुर, रोहतास, छपरा, गोपालगंज, सिवान, चंपारण, बक्सर, कैमूर, ये तो बिहार के जिले हुए। इसके अतिरिक्त यूपी के भी कई जिले जैसे इलाहाबाद, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, ये सभी भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं। यहाँ के निवासी भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही बड़े और विस्तृत क्षेत्र में भोजपुरी भाषी निवास करते हैं। इस स्थिति में हम कहीं से भी पीछे नहीं हैं। कहा ना, हमारी एक समृद्ध विरासत है और अपने इस विरासत को, पहचान को हमें बनाए रखना है, तभी हमारा वजूद बरकरार रहेगा। अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले संसद में भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इसी बीच किसी माननीय सांसद महोदय के सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम, जो दक्षिण भारतीय व तमिल भाषी हैं, ने बहुत धीरे धीरे यह कहा कि हम राउर भावना समझाता नहीं। इसके बाद पूरा संसद भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी उनकी इस टिप्पणी को काफ़ी सराहा। अगले दिन अखबारों के मुख्य पृष्ठ की चर्चित खबर बनी ये पंक्तियाँ। हमारे भोजपुर की कई विभूतियाँ राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो या राजनीति का या फिर उद्योग का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो छपरा जिले के निवासी थे, द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, प्रसिद्ध साहित्यकार शिवपूजन सहाय, राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह, सरीखे कई लोग जो अपनी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए वो भोजपुरी भाषी ही थे। अभी वर्तमान में भारतीय स्थल सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो भोजपुर जिले के तरारी थाने के करथ गांव के रहने वाले हैं। पिछले दिनों जब इनका आगमन हुआ था तो पुराना शाहबाद अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इसी तरह सिनेमा के क्षेत्र में मनोज तिवारी मृदुल की लोकप्रियता के बारे में क्या कहना। मॉरिशस में भी इनके नाम की गूंज है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यही जज्बा और सोच उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकी है, भोजपुरी भाषी होने का मादा। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक कुछ भोजपुरी पत्रिकाएं भी निकलती थीं, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी हैं। इसके लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। गाँव घर भोजपुरी की एक बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन आरा से स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव भानु के द्वारा किया जाता था। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। हिंदी की पत्रिकाएं तो लोग गर्व से खरीदते हैं, लेकिन भोजपुरी की खरीदने में हीन भावना आड़े आ जाती है। पत्रिका व्यवसायिक हानि होने से बंद हो गई। तो जब तक हम अपनी इस भावना को नहीं बदलेंगे, भोजपुरी का भला नहीं कर पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम बढ़ चढ़ कर भोजपुरी कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, भोजपुरी साहित्य को पढ़ें, चाहे घर हो या बाहर, बेझिझक आपसी बातचीत में भोजपुरी का प्रयोग करें। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम भोजपुरी का भला कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। आज यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पूरे देश में लगभग 8 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। यही कारण है कि भोजपुरी फिल्मों का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। आज की तारीख में भारत में प्रत्येक वर्ष कई भोजपुरी फिल्में बनती हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के कलाकार उसमें अभिनय करते हैं और धड़ल्ले से भोजपुरी बोलते हैं। तो जब वे किसी अन्य भाषा के होकर हमारी भाषा को अपना सकते हैं, तो भोजपुरी तो हमारी अपनी मातृभाषा है, हम भला क्यों नहीं इसे बढ़ावा दे सकते। हमारी अस्मिता और हमारी पहचान है भोजपुरी। तो आइए हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी का प्रयोग करेंगे और अपनी इस मिट्टी का कर्ज उतार सकेंगे।

0: देखें श्रोता सभी कितना बढ़िया जानकारी देनी समरेश कुमार सिन्हा जी। सही में भोजपुरी बहुत समृद्धशाली भाषा बा, इतना पर्यायवाची शब्द कहीं ना मिले भोजपुरी ऐसा। देखिए शरीर के हमने के माने एक तरह से कहेंगे धड़ के और सर के जुड़े वाला 2 इंची या 3 इंची कहीं की गर्दन बा, ये गर्दन के भोजपुरी में हमने कहें जा गला गर्दन नेट घघेली फफेला, माने इतना समृद्धशाली भाषा बा। एगो पेन बा अंग्रेजी में कहीं पेन, तो पेन जोन बाटे कहीं कि पेन के हिंदी बा दर्द, आ भोजपुरी में दर्द के बाय इतना शब्द कि देखिए दर्दा करकता छिछिनाता छछनाता दुखाता बथता, माने एक तरह से कहीं कि बहुत काफ़ी एकरा में हमने के शब्द बा भोजपुरी के। तो भोजपुरी अपने आप में सही में समृद्धशाली भाषा बा, एकरा के हमने के बढ़ावा देवे के चाहिए अपनावे के चाहिए। ये बात खातिर देखी हमने के समरेश कुमार सिन्हा जी के बहुत बहुत धन्यवाद दिल जा। भोजपुरी वास्तव में बा बहुत मीठा भाषा भी बा। तो अब आई आगे हमने के जानकारी ली जाओ, घर पर सोलर प्लेट लगाई और बिजली बचाई। श्रोता सभे घर के छत पर पैनल सोलर पैनल लगा के आ बिजली उत्पन्न कैल एगो बेहतर विकल्प बा। एकरा खातिर हमने के सोलर पैनल इन्वर्टर बैटरी ऑफ ग्रिड खातिर और स्ट्रक्चर के आवश्यकता होला। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी के भी लाभ मिलेला। 2 किलोवाट तक 30,000 प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट तक 18,000 प्रति किलोवाट अतिरिक्त सब्सिडी बा। माने एकरा के माने सबसे अच्छा तरीका बा कि कोनो प्रमाणित भेंडर से वह संपर्क करी। सोलर सिस्टम लगावे के चरण दर चरण हमने के जाने के चाहिए। ए प्रकार से बाकी योजना और क्षमता घर के बिजली के खपत जैसे यूनिट के जाँच कर ली। सामान्यतः 1 किवी खातिर 100 वर्ग फुट जगह के जरूरत होला। दूसरा देखें कि एकर प्रकार चुनी, ऑन ग्रिड बिजली ग्रिड से जुड़ल रही आ दिन में बिजली बनाई रात में ग्रिड के उपयोग करी, मीटरिंग के माध्यम से बिल कम हो जाए। ऑफ ग्रिड बैटरी के साथ बिना बिजली के भी काम करी। ये देखी तीसरा देखिए देखल जाओ कि सोलर प्लेट के छत पर दक्षिण दिशा में छाया रहित स्थान पर माउंटिंग स्ट्रक्चर पर कसी जोना से कि हमेशा सूर्य के प्रकाश मिलत रहे छाया ओकरा पर न पड़े। कनेक्शन पैनल के सोलर इन्वर्टर से जोड़ दी, इन्वर्टर जौन बा वो डीसी के एसी में बदल देला। पांचवा देखें कि बैटरी और ग्रिड कनेक्शन, बैटरी के इन्वर्टर से जोड़ी खाली ऑफ ग्रिड खातिर, मने ऑन ग्रिड खातिर नहीं। छठवां देखें कि नेट मॉनिटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम खातिर बिजली विभाग से संपर्क करी, नेट मीटर लगवाई ताकि अतिरिक्त बिजली ग्रिड से के मने बेचल जा सके। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक 78,000 रुपया तक सब्सिडी मिल सकता। देखिए श्रोता सब कितना बढ़िया योजना बा कि घर पर हमने के सोलर प्लेट लगाओ जाओ और बिजली के बचत कर जाओ। कैसे कि देखिए बिजली के यूनिट बा बहुत महंगा हो रहा बा आ धीरे धीरे आदमी सब लोग सोलर ऊर्जा के तरफ भाग रहा बा। काहे से कि महंगाई के देखते अब हमने के सोलर प्लेट लगा दिया जाए तो घर में बिजली की जरूरत नहीं है, दिन भर चार्ज हुई रात के बत्ती बरी, पंखा भी चलाओ चाहिए तो पंखा भी चला सकते नहीं, अतिरिक्त बिजली हुई तो हमने के दे सकत बनी जा अपना सरकार के, हमने के मीटर के भी बिल कम हो जी। तो देखिए बहुत फायदे की चीज़ बा, इसे अपना घर पर सोलर प्लेट लगावे के जरूर सोची। आई एगो संदेश सुनल जा फिर आगे हमने के कुछ सामान्य सलाह जानल जाए।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता आ सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।

देखी भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान बाकी मने दू चार दिन हमनी के मई के में जिला में एक दो स्थान पर गरज और चमक के साथ आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकता है। ये मने हल्का माध्यम वर्षा होखे के भी अनुमान बा। अधिकतम तापमान हमनी के 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होखे की संभावना बा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चले के भी संभावना बा। मौसम विभाग के चेतावनी बा कि जिला के एक दो स्थान पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकी तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चल सकत बा। आंधी तेज हवा और वर्षा फसल के नुकसान फूल फल झड़े और कीट रोग प्रकोप तथा सब्जी और बागवानी फसल के क्षति पहुँचा सकता और पशुओं पर भी तनाव बढ़ा सकत बा। ऐसे हमनी के सावधान रहे के चाहे। सामान्य सलाह बा कि आगामी दिन में वर्षा के संभावना के देखत हमनी के खेत में कटल फसल के सुरक्षित स्थान पर ढक के रखी आ खड़ा फसल बा तो ओकर सिंचाई स्थगित कर दी। खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी, ऐसे मत करी। देखी लघु संदेश बा कि खड़ा फसल में सिंचाई एकदम स्थगित कर दी, सिंचाई मत करी आ खाद कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ होकला पर करी। गाय खातिर बा बियान गाय पशुओं के प्रसूति बुखार से बचावे खातिर खनिज मिश्रण 50 से 60 किलोग्राम प्रतिदिन दी और दूध देवे वाला पशुओं के खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के दर से दी। गाय के 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध के दर से उत्पादन होता वो रख दी और भैंस के 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध के उत्पादन के दर से दी। हरा चारा जौन बा 20 से 25 किलो प्रति पशुओं के हिसाब से दिहल करी। मौसम के चेतावनी हमने जान लिया। आगामी दिन में वर्षा के संभावना के देखत खेत में खड़ी फसल के सुरक्षित स्थान पर रखी और ओकरा में सिंचाई जोन बा खड़ा फसल में बंद कर दी। यही तरह से देखी समय तो हमनी के अब समाप्त हो रहा बा। आज के कल के हमनी के मौसम के पूर्वानुमान जान लिया जा। आज तक खैर बीत गई, कल जौन बा 7 तारीख बा, कल के मौसम जौन बा वर्षा 6 mm बा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड बा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड बा, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 70% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 25% और हवा के गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले के संभावना बा। ये सारे कार्यक्रम के प्रस्तुति करता रही अमित कुमार जी। तो देखिए समय तो एकदम उड़ा चलत चलत चलत के बेरा से सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शिव चर्चा एक आध्यात्मिक कथा। निर्मला सिन्हा के बोल हैं और अशोक घायल का संगीत है।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना रूठ गईले सैया हमार फिल्म का ये गीत, अनजान के बोल थे और चित्रगुप्ता का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए साथी संघाती फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और मनोज मिश्रा, इंदु सोनाली और तृप्ति शाक्या की आवाज़ों में, विनय बिहारी के बोल हैं, राजेश गुप्ता का संगीत है।

0: बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
2: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए जसपाल सिंह की आवाज़ में नदिया के पार फिल्म का ये गीत, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन का।

जसपाल सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अमर सुहागन फिल्म का ये गीत। एस एन त्रिपाठी के बोल हैं और राममूर्ति चतुर्वेदी का संगीत है।

0: आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सांझी गीत अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने वाले हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर

0: बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी, हम हाँ जोड़ते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
2: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
1: हाँ।
2: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
1: जानकारियों का अभाव है, हाँ।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
1: जी
2: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
1: जी।
2: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
1: जी।
2: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
0: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
2: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
2: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
2: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
2: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
2: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
2: मैं एकदम एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
2: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट प्रोमिया भी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित।

0: ग्रुप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है। तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती
1: है। सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्रीराज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की

0: जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है। हाँ। सब कुछ समान है। हाँ। उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं। अब उसके अब सामने आएगी ना लायबिलिटी हुड का आएगा ना, लायबिलिटी हुड का आएगा ना कि आखिर मैं क्या करूं। तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और अब चलने का वक्त हो गया, 2025 में ये अंतिम बार राजेश और आपकी बातचीत चल रही थी। नए साल में, एक नए साल में नए उमंग और जोश के साथ एक बार फिर से पैरामेडिकल है पारस लेकर आपका राजेश आएगा। सबको कहते हैं आज ही, आज है 31 दिसंबर, सबको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। 7:15 होने को हैं। अब लीजिए सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार।

सासाराम मंडल कारा के बंदी वर्मी कंपोस्ट बनाकर स्वरोजगार से जुड़ेंगे, इसको लेकर 60 बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का मानना है कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे उद्देश्य से कल यानी कि मंगलवार को 2 दिवसीय वर्मी कंपोस्ट उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। जेल अधीक्षक सुदीप कुमार ने इस संबंध में बताया कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एक सरल और कम लागत वाला व्यवसाय है।

जिसे बंदी रिहाई के बाद अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि वे समाज में सम्मानजनक जीवन भी जी सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जेल प्रशासन का यह प्रयास है कि बंदियों को सजा के साथ साथ सुधार और पुनर्वास का अवसर भी मिले। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया, इसके लाभ और विपणन के तरीके बताए जा रहे हैं। इससे पहले बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

रोहतास जिले में अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से एक दिवसीय जॉब कैंप लगेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश तिवारी ने बताया कि नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ओल्ड जीटी रोड कुशवाहा भवन में 9 मई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें MYA लाइफ केयर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा GDA CME नर्सिंग पद के लिए 50 से रिक्ति के विरुद्ध आवेदकों का चयन किया जाएगा। जॉब का लोकेशन दिल्ली NCR है। आवेदक के पास उनके बायोडाटा, पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, शैक्षणिक के योग्यता, बैंक पासबुक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं ANM और साथ ही साथ GNM होनी चाहिए। पुरुष एवं इसमें महिला आवेदक भाग ले सकते हैं।

जिले में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और विवादों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को संबंधित जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू होगी। इसमें जमीन सौदों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। नए नियम के तहत जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय जमीन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां देनी अनिवार्य होगी। इसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम शामिल है। इन विवरणों के आधार पर संबंधित अंचल कार्यालयों द्वारा जमीन की पूरी जांच की जाएगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अंचलाधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर हर हाल में जांच रिपोर्ट जारी करनी होगी।

और अब बात कैमूर ज़िले की। कैमूर ज़िले में पिछले चार वित्तीय वर्षों में जिला नियोजनालय से 7,412 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली है। कैमूर में निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए कुल 92,781 युवाओं ने NCCS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन के बाद जिला नियोजनालय से आयोजित होने वाले जॉब कैंप के जरिए बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का अवसर मिल रहा है। कैमूर में कुल निबंधित बेरोजगारों की संख्या 92,781 है, जिसमें कि 54,921

पुरुष और 38,860 महिलाओं ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वैसे युवा जो बेरोजगार हैं अथवा बेहतर रोजगार के इच्छुक हैं वह नेशनल सर्विस करियर सर्विस पोर्टल पर निबंधन करा सकते हैं।

कैमूर में सभी सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। सरकारी कार्यालय में अफसर और कर्मियों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किया गया है। कार्यालय में उपस्थिति की नियमित जांच की जाएगी। इस बारे में जिला पदाधिकारी कैमूर नितिन कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। डीएम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने एवं कार्यालय अवधि के समाप्ति के उपरांत ही कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू किया गया है, जिसमें कार्यालय अवधि 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है, जबकि नवंबर से फरवरी तक 10:30 से 5 बजे तक निर्धारित करते हुए मध्याह्न भोजन का समय 1:30 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। सरकार ने कार्यालय अनुशासन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

भभुआ सदर अस्पताल परिसर में कल यानी कि मंगलवार को अग्निशमन विभाग द्वारा आग से बचाव को लेकर मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सुरेंद्र राम के नेतृत्व में किया गया। बढ़ती गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए विभाग द्वारा इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मार्क डील के दौरान प्रधान अग्नि कृष्णा कुमार ने उपस्थित लोगों को आग से बचाव के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि झुग्गी झोपड़ी के निर्माण में प्लास्टिक सीट, कपड़ा और तिरपाल जैसी ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग करने से बचना चाहिए। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में 7:25 होने को हैं। दिल पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया की

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। राज्य मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम माँ सीता के नाम पर करने के प्रस्ताव समेत कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुपौल निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के सुपौल, छपरा और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा। भाजपा

0: विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
1: माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से रहने वाले हैं एवं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश के स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी समेत बिहार के एनडीए के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूरे बिहार के लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार के लिए तय फॉर्मूले पर ही हो रहा है।
2: मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के 15 और जदयू के 14 सदस्यों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा और जदयू से मंत्रिमंडल में अधिकांश पुराने चेहरों को ही जगह मिलने की उम्मीद है। वहीं जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार समेत कुछ नए चेहरों को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लोजपा रामविलास से संजय सिंह और संजय पासवान, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन के मंत्री बनने की संभावना है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से विधायक स्नेहलता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पटना आवास पर हुई। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू कोटे से शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में 80 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। गांधी मैदान के हरेक प्रवेश द्वार पर चेकिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। इधर समारोह को देखते हुए पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले कई रूटों पर आवागमन बंद रहेगा। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा की ओर तथा भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर भी सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दारोगा राय पथ से वीरचंद पटेल पथ पर भी इस अवधि में आवागमन बंद रहेगा। इसके अलावा भी कई अन्य रूटों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम मां सीता के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
3: सीतामढ़ी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सीतामढ़ी के रूप में किया गया।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को 30 जून 2026 तक के लिए विस्तारित कर दिया है।
3: बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि 30 जून 26 तक विस्तारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में ई बसों के परिचालन के लिए 517 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक व्यय को स्वीकृति प्रदान की है। पटना एम्स का दूसरा

0: दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि थे। वहीं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और संस्थान निकाय के सदस्य रविशंकर प्रसाद तथा तारिक अनवर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 27 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सक का पेशा केवल रोजगार नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है।
1: एक तो होता है कि अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी करना, करियर ग्रोथ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली रिसर्च करें आप, एनालिसिस करें आप, बहुत कॉम्पिटेंस पाए, बट एज बिफोर जो इंपॉर्टेंस होती है समाज को वापस देना, नॉलेज ज्ञान प्राप्त इंसान करता है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जहां पर भी आपको वो चांस मिले उसको वापस देने का, उसको उससे मुकरिएगा मत।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सुपौल निबंधन कार्यालय में पदस्थापित अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की, साथ ही उनके पटना और छपरा स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईओयू के उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद राम ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अवर निबंधक पर आय से 65% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
4: आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 6/26 जिला अवर निबंधक सुपौल के विरुद्ध दर्ज हुआ है, जिसके संबंध में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी न्यायालय पटना द्वारा अवर निबंधक के कार्यालय के चेंबर का सर्च वारंट निर्गत हुआ था। उसके आलोक में मैं पुलिस उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद राम अपनी टीम के साथ सर्च करने के लिए आए थे। सर्च की कार्रवाई पूर्ण हुई।
3: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के नगरनौसा बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित महिला पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी को 3,200 रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पर्यवेक्षिका पोषाहार की राशि से संबंधित पंजी पर हस्ताक्षर करने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रही थी। IRCTC घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टल गया है। अदालत अब 22 मई को फैसला सुनाएगी। न्यायालय ने पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई अन्य आरोपी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वैशाली, सारण, सिवान, नालंदा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज समेत कई जिलों में आंधी बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ पौधे और

0: बिजली के खंभे उखड़ गए। इससे आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
1: दिनांक 7 मई 2026 को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के जहानपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सरिया गिरने से एक छात्र की हुई मौत के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़वा दियारा में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अररिया जिले के चोकबनी समेकित चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किए गए एक चीनी नागरिक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उसे पिछले दिनों बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारसी बिखा गांव में भूमि विवाद में एक बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत न्याय बस्ती लोहाटोला के पास सड़क हादसे में पिकअप वैन पर सवार दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। नवादा जिले के रजौली टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क किनारे खड़ी हाईवा से एक तेज रफ्तार कार के टकरा जाने के चलते ये हादसा हुआ। मुंगेर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस को देखते ही वाहन चालक फरार हो गया। सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर 20 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज जिला प्रशासन ने 89 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। राज्य मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम मां सीता के नाम पर करने के प्रस्ताव समेत कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुपौल निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के सुपौल, छपरा और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
3: किशनगंज जिले में बीते दिनों तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आंधी के कारण कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई। शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति देखी गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। किशनगंज जिले में रसोई गैस की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया कि वर्तमान में जिले में 7,174 से अधिक गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अब एजेंसी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एजेंसी होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर उच्च स्तर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में सीमा सुरक्षा, अवैध आवागमन पर रोक, तस्करी नियंत्रण और सीमा पार गतिविधियों की निगरानी पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, डीजी कुंदन कृष्णन सहित किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के डीएम एवं एसपी मौजूद रहे। श्री अमृत ने ड्रग्स तस्करी, फर्जी आधार कार्ड, नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण और संदिग्ध निर्माण कार्यों की जांच तेज करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद किशनगंज जिले में पार्टी कार्यकर्ता में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। शहर के बूढ़ी काली मंदिर परिसर में विशेष रूप से जश्न मनाया गया, जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। भाजपा नेता सुशांत गोप ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और विकास के प्रति समर्थन को दर्शाती है। पोठिया प्रखंड के झारबारी क्षेत्र में केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल का कैंप और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सीआईएसएफ के डीआईजी ने जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इधर जिले के खगड़ा स्थित हवाई अड्डे के विकास कार्य की प्रगति तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने रनवे की लंबाई बढ़ाने और चार दीवारी की मरम्मत के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में लगभग 900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े विमानों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाकर 2 से 2.5 किलोमीटर करने की योजना है, जिससे मध्यम आकार के विमान उतर सकेंगे। रनवे विस्तार के लिए आसपास के जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन और एटीसी टावर के विकास की भी तैयारी की जा रही है। निजी वाहनों पर पुलिस प्रेस या अन्य भ्रामक नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने ऐसे सभी नेम प्लेट 1 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई लोग निजी वाहनों पर ऐसे शब्दों का उपयोग कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने कहा कि समय रहते अवैध नेम प्लेट हटा ले, अन्यथा जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को जिले में राष्ट्र लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुक्तेश पनोहर ने थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे आमजनों के बीच जागरूकता फैलाए और उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों के निस्तारण के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। किशनगंज में जूट मिल की जमीन से जुड़े एक कथित घोटाले का मामला सामने आया है। जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर भू माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा और खरीद

0: का आरोप लगाया। इस संबंध में जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह जमीन रहती पाई गई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है आपके फोन इन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनपसंद। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद।
0: जी हाँ नमस्कार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताइए।
1: ये रघुवर पासवान खाखड़ा।
0: अच्छा, खखरा से रघुवर पासवान जी बोल रहे हैं जी। रघुवर पासवान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गांव है खखरा किस जिला में पड़ता है?
1: रोहतास में।
0: अच्छा, रोहतास के ही आप निवासी हैं। तो चलिए, आकाशवाणी सासाराम भी तो रोहतास में ही है, तो आपका कॉल लगा है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: जी, राजा की आएगी बरात, कोई भी उसका गाना सुनवा दीजिए।
0: अच्छा बिल्कुल, जरूर सुनवाएंगे। और बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी ठीक है। ये पुलिस में राज तिलक पासवान।
0: रघुवर जी और आपके भाई जो राज तिलक पासवान हैं, सबको सुनवाते हैं हम राजा की आएगी बारात फिल्म का गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं?
1: सागर परवाना बोल रहे हैं, नाहर मनटोला, जिला मधुबनी, बिहार से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: हाँ, चलिए,
1: दीदी।
0: तो
1: आप
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: आज हमको गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है भाभी। गाने के बोले हैं, चल उड़ जा रे पंछी।
0: अच्छा, चल उड़ जा रे पंछी। भावी फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत है और इस गीत में बहुत कुछ यथार्थवादी बातें भी बताई गई हैं। तो क्यों पसंद है आपको ये गीत?
1: पसंद है बहुत गाना।
0: अच्छा, चलिए, तो पूरी करते हैं आपकी पसंद, आपको आपके शहर में।
1: चल

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते। कैसे हैं आप, बताइए।
1: मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल।
0: मैं रागिनी आपसे बात कर रही हूँ।
1: अरे अरे रागिनी बहन जी, रात को हमने सुना आपका
0: अच्छा
1: प्रोग्राम,
0: अच्छा कैसा लगा आपको?
1: बढ़िया लगा जी। SMS का प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश करते हैं आप, नाम भी ढेर सारे शामिल करते हैं और बीच बीच में कोई शेर भी सुना देते हैं, अच्छा लगता है।
0: चलिए, आप सब श्रोताओं की दुआएं हैं कि हम लोग इतना अच्छा कर पाते हैं। वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जलालाबाद वेस्ट पंजाब से बात कर रहा हूँ जी, सुरेश गगनेजा।
0: जी सुरेश गगनेजा जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप, मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से कार्यक्रम सुनते हैं और नियमित श्रोता हैं आप आकाशवाणी सासाराम के।
1: बिल्कुल,
0: तो आज कौन सी पसंद है आपकी?
1: फिल्म मुगले आजम और गीता जी, प्यार किया तो डरना क्या।
0: वाह, बड़ी अच्छी फरमाइश है आपकी। तो चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो
0: हेलो मनपसंद में किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: विक्रमगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 27 से।
0: लाइक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो मनपसंद कार्यक्रम में। वैसे कौन सी फरमाइश है और किस गीत के लिए है? अच्छा, जिधर नजर उठाइए बाहर ही बाहर है। किस फिल्म का है ये गीत? अच्छा, 14वीं का चांद। ये तो बेहद ही प्रसिद्ध फिल्म है और इसका गीत तो हमारे पास उपलब्ध भी है, तो हम इसी गीत में आपका नाम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। हम रागिनी बोल रहे हैं। नमस्ते आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से आकाशवाणी सासाराम से जुड़े रहें। अच्छा, कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम?
1: जी।
0: हाँ, तो आप श्रोताओं का ही ये प्यार दुलार है कि हमें भी प्रोग्राम करने में काफी अच्छा लगता है। तो लाइक जी, चलिए पूरी करते हैं आपके शहर में आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: जी। योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा, योगेश जी बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी योगेश जी, आपकी तो फरमाइश हम रोजाना शामिल करते हैं अपने ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद में, आप सुनते होंगे। कैसा लगता है हमारा ई मनपसंद कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है, कोई भी माध्यम हो, नाम आता है तो अच्छा ही लगता है।
0: आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। हाँ,
1: जी
0: बहुत मीठा
1: शुक्रिया
0: बोल रहे हैं आप।
1: जी।
0: आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म फकीरा से सुनवा देंगे, तोता मैना की कहानी।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने, तो जरूर पूरी करेंगे।
1: आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। हम लगभग 180 रेडियो स्टेशन में फोन करते हैं और लगभग 15,000 से अधिक फोन कॉल्स हो चुके हैं और वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।
0: वाह, आप जैसे श्रोता अगर हैं तो आकाशवाणी चलती रहेगी। आप जैसे श्रोताओं का ही प्यार है। और चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम दर्ज हो चुका है। और चलिए, सुनवाते हैं आपको फकीरा फिल्म का ये गीत आपके अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद जी, नमस्ते
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका?
1: जी। थैंक यू सो मच। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। जी
0: अच्छा, प्रेम सिंह सिसोदिया।
1: बिल्कुल मैडम।
0: उज्जैन से बड़ी ही दूर से आपने हमें फोन किया है।
1: महाकालेश्वर की नगरी में आपका स्वागत है।
0: जी, बिल्कुल। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी आकाशवाणी सासाराम की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
1: बताना चाहूंगा, मैं फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और गाने के बोले किसी डिस्को में जाएं। जी
0: अच्छा, तो डिस्को में जाते हैं क्या आप?
1: डिस्को में तो नहीं जाते हैं, बस गाना सुनना अच्छा लगता है। और आपको बताऊं, कभी शादी होती है कहीं पर भी ना, तो जब ये
0: हाँ
1: गाना साउंड पे बजता है ना तो काफी

0: हाँ, दिल झूमने पर मजबूर हो जाता है। वैसे
1: जी
0: मस्ती भरा
1: बिल्कुल।
0: गीत है ये, और कभी कभी मस्ती भरा गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी हाँ बताओ आपको, मैं मोबाइल ऐप से आपकी कार्यक्रम सुनता हूँ
0: जी,
1: जी। और उज्जैन महाकालेश्वर बाबा का मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और सावन महीने में तो मतलब आपको ऐसे लगा कि पूरा महीना भी मतलब कम लगता है, इसलिए कांवड़ यात्री मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं और दूर
0: जी
1: दूर से मतलब अपने मन की इच्छा पूरी करके जाते हैं यहाँ पर।
0: हाँ, हमने भी सुना है कि उज्जैन का जो ये महाकालेश्वर मंदिर है काफी प्रसिद्ध है, और वहाँ मन्नतें भी पूरी होती हैं। तो बिल्कुल, हमें भी कभी आने का मौका मिलेगा तो हम भी जरूर आएंगे। आप
1: बिल्कुल आपका
0: जैसे
1: स्वागत रहेगा। और 2028 में महाकुंभ भी लगेगा यहाँ पर, तो उसमें
0: जी,
1: तो उसमें आपको विशेष करके हम बुलाएंगे और आपको आना पड़ेगा।
0: चलिए चलिए, बिल्कुल। आप श्रोता जो ये प्यार हमें करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और हमारा तो दिल चाहता है कि हम अभी आपके यहाँ चले हैं, लेकिन हमारे साथ भी कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन बिल्कुल जरूर आएंगे। और फिलहाल सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शेख जफर हसन कुआत जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, आप तो हमारे ही जिला से बोल रहे हैं। कुआत से आप फोन लगाया है? तुरंत फोन लग गया या कुछ देर से लगा?
1: देर से क्या, उधर 2 हफ्ता कॉल लगाते थे, नहीं लगा कॉल। पिछले हफ्ता तो नहीं हुआ था प्रोग्राम। ये बताइए आपका नाम।
0: मेरा नाम रागिनी हुआ। जी, शेख जफर हसन जी, आपका नाम भी तो हाँ हम शामिल करते रहते
1: तो
0: हैं।
1: आपसे
0: जी।
1: पहली बात मैं कहना ये चाहूंगा, आप जितनी उद्घोषिका है आपको मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ, एक नंबर को मैं रखता हूँ।
0: जी, आपका ये प्यार मैं भी नहीं
1: अंदाज
0: भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: गए का अंदाज, श्रोताओं से मुखातिब उनकी बात को पकड़ लेती है, जवाब देती है। हमको यही लगता है कि आप विविध भारती के उद्घोषिका से मैं बात कर रहा हूँ, इससे कमी नहीं आप।
0: जी, शेख जफर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस तरह का सोचते हैं। आपका जो ये प्यार है उसके चलते ही हम लोग यहाँ टिके हुए भी हैं। बहुत अच्छा लगता है आप श्रोता इस तरह की प्यारी बातें करते हैं, तो हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और सुनाइए, क्या पसंद है आज आपकी?
1: आखिरी शेर की तो पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी।
1: ये परवीन शाकिर का है, एक शायरा है। तो गुमान होता है वो भूल सकता है मुझे, क्योंकि आज मेरी तस्वीर इसने मांगी है। मेरे खुदा मुझे इसके नसीब में लिख दे कि मुझसे मेरी ही तकदीर इसने मांगी है।
0: जी, बहुत खूब, क्या खूबसूरत शेर है। ये मेरी तकदीर लिख दे, बहुत ही अच्छा शेर आप तो बोलते हैं। और हमें भी शेख जफर हसन जी बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे
1: हाँ, ये
0: श्रोताओं से
1: तो
0: बात
1: अमित
0: करके।
1: साहब के लिए गाना रखा था, क्योंकि वैसे आप आ गई हैं तो आपको गाना 2 लाइन सुना देता हूँ। छोटा सा है,
0: जी
1: फिल्म
0: जी
1: आंखें मोहम्मद रफी ने गाया था, 1950 में बनी थी ये फिल्म।
0: जी
1: हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, दिल रोएगा तेरे लिए, आंसू न बहेंगे।
0: जी, बिल्कुल।
1: ये नियमित सुनता है आपके ईमेल प्रोग्राम में।
0: जी
1: बस
0: जी
1: सीतामढ़ी के अकरम हुसैन प्रिंस,
0: जी
1: दरेर बिहार के मोहम्मद आसिफ खान,
0: जी जी
1: पूरा मऊ के उस्मान अली अंसारी,
0: वाह।
1: और अदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार।
0: जी,
1: और मैडम आपकी जितनी तारीफ में कर दिया जाए, सही दिल से किया है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शेख जफर हसन जी। और इतनी प्यारी बात आप करते हैं कि हमारा भी दिल कर रहा है कि आपसे ढेर सारी बातें यूं ही करते रहें। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे कई श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। फिर कभी आपसे ज़रूर बात होगी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने फ़ोन लगाया इस कार्यक्रम में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार
0: नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? अरे
1: जी। मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: वाह जयप्रकाश जी, आपने तो बड़ी ही दूर से हमें फोन लगाया है उत्तर प्रदेश से। और सुनाइए, उत्तर प्रदेश में कैसा मौसम है?
1: जी मौसम तो फिलहाल आजकल 3-4 दिनों से ठंडा है क्योंकि बारिश हो रही थी। जी
0: तो बारिश हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि इस
1: जी
0: धूप
1: बिल्कुल, गर्मी से
0: में,
1: राहत मिली है
0: हाँ
1: लोगों को।
0: जी, राहत मिली है। और धूप के बीच अगर कभी कभी बूंदाबांदी और बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मौसम सुहावना हो जाता है। और आपकी क्या फरमाइश है आज?
1: अपने रंग हजार और गायिका है लता मंगेशकर, और गीत के बोल हैं, गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया रे मेरा मन सजन तेरी दो अखियन में।
0: अरे वाह, लता मंगेशकर जी की तो गायकी के क्या कहने हैं,
1: और मैं
0: बिल्कुल
1: मैडम कुछ
0: अमर
1: अपने
0: है।
1: दोस्तों को भी याद कर लूं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: हमारे मित्र हैं जौनपुर में जमील अहमद शाह, वाराणसी में अशोक प्रजापति, साई सद्दू, मोहसिन अंसारी, विदिशा में सेवा लोहट, भानु में अतल, बस्ती विनोद गोपाल पांडे।
0: सभी श्रोताओं को हम सुनवाते हैं आपके अपने राज्य में ये मनपसंद गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हाँ नमस्ते
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम यादव बोल रहा हूँ।
0: जी? तुकाराम यादव जी, चलिए आपका कार्यक्रम में फोन लगा। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों से फोन लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: चलिए, आज आपका फोन लग गया तो खुशी तो हमें भी हो रही है कि आप जैसे श्रोता हमें कॉल नहीं लगने पर भी बार बार कॉल लगाते हैं। आपका ये जो धैर्य है वो काबिले तारीफ है। और आज तुकाराम जी, क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: सबसे पहले आपका आपके इधर मौसम कैसा है?
0: मेरे यहाँ तो मौसम बहुत ही खुशगवार है और कल रात भी बारिश हुई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से शुरू हुई थी बारिश, लेकिन हम कहेंगे कि अच्छी खासी बारिश हो गई है। सड़कों पर पानी है और मौसम अभी भी ठंडा है, अच्छा लग रहा है।
1: बहुत गर्मी है।
0: अच्छा, तो चलिए हम भेज देते हैं गीत के माध्यम से बारिश आपके शहर में। अच्छा, हाथी मेरे साथी का कौन सा गीत?
1: प्यारे हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे।
0: बहुत ही अच्छी बात आप बोल रहे हैं, ये गीत के माध्यम से तो है ही, लेकिन वाकई अगर हम रियलिटी की बात करें तो सही बात है, अगर हम सबके साथ विनम्रता से पेश आए तो हमारी जिंदगी भी काफी अच्छी गुजरती है। बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने तुकाराम जी।
1: कुछ मित्रों का नाम डेडिकेट करना
0: अच्छा
1: चाहता हूँ।
0: अच्छा बिल्कुल, ले लीजिए आप।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: हमारे मित्र है पीएसआर शेळके जी, कांताबाव रामगढ़ जी, विठ्ठल पवार जी, किरण
0: जी
1: शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेळके जी, श्रीकांत भंडारे जी, के
0: जी
1: पाटील चारुकर जी, धनंजय पटेल जी, रमेश जाधव जी, हम सब गीत सुनना चाहते हैं।
0: जी जी तो आप सब मिलकर सुनिए हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत।

एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल लो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मन पसंद, नमस्कार सर।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: अच्छा, मैं मोतीमाला ग्राम खरौट गढ़नौखा से। हाँ,
0: रोहतास जिला में पड़ता है
1: आज तो कोई नया है, दूसरा कोई से बात हो रहा है।
0: जी। रागिनी जी से बात हो रहा है।
1: अच्छा, अब तो मैसेज से ना।
0: हाँ, ईमेल हो गया है, अब ईमेल के माध्यम से आप ई मनपसंद
1: हाँ,
0: कार्यक्रम में सुन
1: ईमेल
0: सकते हैं अपनी
1: के
0: पसंद का
1: माध्यम से
0: गीत।
1: आपको बहुत बार हम सुने हैं। आपने मेरा नाम भी उस समय जो हम लोग व्हाट्सएप से जो भेजते थे,
0: जी, आज क्या सुनना चाहेंगे मोतीमाला जी?
1: आज हम सुनना चाहेंगे संबंध फिल्म का एक गाना है, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
0: चलिए, बहुत ही अच्छा गीत चुना है आपने,
1: वही
0: क्योंकि
1: टाइम से गाना हम सुनते हैं मैडम।
0: हाँ, बिल्कुल
1: कुछ मेरे दोस्त हैं, और
0: बिल्कुल
1: दोस्त हैं उन लोगों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। राजकिशोर चौहान लालगंज से हैं, आरा से लाल बिहारी हैं, ससराम से रवि भूषण प्रसाद हैं, ये चेनारी से संत कुमार गुप्ता जी हैं। वो लोग इस गाना को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि यह गाना हम लोग को सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, हम तो आपकी पसंद पूरी करने के लिए ही हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आपसे बात कर रहे हैं। तो लीजिए, सुनिए आप अपने दोस्तों के साथ अपनी पसंद का ये गीत।

0: तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल न करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 0618422130। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं और शेष भाग आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।

0: अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने

0: में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुँच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत

0: अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
1: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नव गठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
2: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू LPG सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू LPG उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग LPG का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू LPG और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी

0: देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ। संतूर वादन पे हैं पंडित शिवकुमार शर्मा, तबला पे संगत करने वाले कलाकार हैं सफ़ात अहमद खान, राग वसंत।

0: इसी के साथ ही शास्त्रीय गायन पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुर सौरभ भाई अब यहीं पे संपन्न होता है। संतूर वादन पे थे पंडित शिव कुमार शर्मा, तबला पे संगत करने वाले कलाकार थे सफात अहमद खां, राग बसंत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ। तू ही तो जन्नत में।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी, सो अनुष्का बन गई

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित

और सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था फिल्म बैंड

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम के साथ।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने NH10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जप कर जाती। मैंने कहा

0: ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशीष कौर की आवाज़ से, मस्तानी एल्बम से। शेखर अस्तित्व के बोल हैं और अरविंदा नियुक का संगीत है।

दीप होसोन की आवाज़ में अभी आपने सुना सुकून एल्बम का ये गीत, और अब लीजिए सुनिए असित त्रिपाठी की आवाज़ में एल्बम तुझे ढूंढे मेरी जान का ये गीत। शकील आज़मी के बोल हैं और राशिद खान का संगीत है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शशि भूषण पांडे की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम हवा महकने लगी का ये गीत। गीतकार थे शशि भूषण पांडे और संगीतकार थे पर्थ सैनी। और अब लीजिए सुनिए जी म्यूजिक ओरिजिनल्स का एल्बम का ये गीत यासिर देसाई की आवाज़ में।

यासिर देसाई की आवाज़ में अभी आपने सुना जी म्यूजिक ओरिजिनल्स एल्बम का ये गीत, कुमार के बोल थे और अनजान भट्टाचार्य का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए अरमान मलिक की आवाज़ में क्या यही प्यार है एल्बम का ये गीत। गीतकार हैं रश्मि बिरार और आनंद बख्शी, संगीतकार अमाल मलिक और आर डी बर्मन का

अरमान मल्लिक के गाए इसी गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म मैंने प्यार किया।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुना चलते चलते फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल थे और बप्पी लहरी का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में 10 नंबरी फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
2: बाप रे,
1: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना 10 नंबरी फिल्म का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में जाने अनजाने फिल्म का ये गीत। आर डी बर्मन का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं।

किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से, और प्रातः 6:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। छः बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदन बार, और 7:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। प्रातः 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 8:15 पर और 8:20 समय होगा आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और 9:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। प्रातः 9:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, और 10:05 पर साहित्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम वार्ता। विषय होगा भारत में नदियों को जोड़ने की आवश्यकता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रेम सुंदर तिवारी। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और 10:45 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसधार। 11:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। 5:10 पर वंदन कार्यक्रम से, और 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। 6:00 आप सुनेंगे किसान वाहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। 6:00 का कार्यक्रम सांझ गीत आप सुन सकते हैं 6:30 पर, और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर आप सुनेंगे

0: से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:50 समय होगा आपकी ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद का। 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग और 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10:00 शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान